सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज बुधवार है, 1948 के भाद्रपद की 18वीं तिथि तदनुसार 9 सितंबर 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
2: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना

0: अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का। वाचन स्वर है अनिल कुमार भारती का।
3: शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का आभूषण है। जिसके व्यवहार में शिष्टाचार और विनम्रता है, उसका सर्वत्र आदर होता है। शिष्टाचार का मूल मंत्र है अपनी नम्रता और दूसरों का सम्मान। पाश्चात्य जगत के महान कवि एडिसन ने कहा है कि विनम्रता तो शरीर की आत्मा का अलंकार है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, विनम्रता तो आध्यात्मिक शक्ति है। वास्तविक नम्रता और शिष्टता सात्विकता के तेज से उज्ज्वल होती है। विनम्रता और शिष्टाचार अंतःकरण की अभिव्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति अशिष्ट होता है, असभ्य होता है, वो कभी संवेदनशील नहीं हो सकता। ईसा मसीह कहते थे कि अपने शत्रु से भी प्रेम भाव रखो, शत्रुओं को बार बार क्षमा कर दो। किसी ने कहा है, स्वार्थी लोग यदि आपसे अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करें तो उनकी उपेक्षा कर दीजिए, किंतु जैसे के साथ तैसा करने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे आप अपने शत्रु को दुखी करने की बजाय स्वयं को दुखी कर लेंगे। वास्तव में हमारे व्यवहार की शिष्टता शालीनता पर जीवन के विकास क्रम का उन्नति

0: धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें उसके जैसा नहीं बनाया। अपने शत्रु की निंदा करने और उसके प्रति विरोध और प्रतिशोध की भावना रखने की बजाय हमें चाहिए कि हम उसके प्रति क्षमा, सहानुभूति और सहयोग की भावना रखें और उसके प्रति उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विषय में सोच विचार के लिए एक भी पल नष्ट न कीजिए। ये गुण हमारे व्यक्तित्व के आभूषण हैं और हमें इन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। मनीषियों और विद्वानों का मानना है कि व्यवहार सदैव विनम्र और शालीन होना चाहिए। सभी के साथ मधुरता, सादगी और सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जो स्वयं पसंद नहीं है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करे, जैसा कि आप अपने लिए औरों से अपेक्षा करते हैं। इसी सत्य को शिष्टाचार, सभ्यता और नागरिकता के नाम से जाना जाता है। ये मानव का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य और उसकी अनमोल संपदा है। जिसमें यह भावना जितनी अधिक होगी, वो उतना ही शिष्ट, शालीन और सभ्य माना जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का। वाचन स्वर था अनिल कुमार भारती का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब वक्त हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस मातृ वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। शदों समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर समय तो साथ नहीं देते, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी समझ, आध्यात्मिक मार्ग और सच्ची भावना जीवन में हमेशा साथ रहती है।

लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 104.5 MHz पर। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति शर्मा बंधु के स्वर में है।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, शक्ति का अर्थ केवल सामर्थ्य दिखाना नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि उसका प्रयोग कब, कहां और कितना करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग हर जगह नहीं करता, बल्कि सही समय, सही स्थान और सही उद्देश्य के लिए करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शक्ति दिखाने से अधिक महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण रखना होता है। कार्यक्रम में ये अंतिम भजन आपको सुनवा रहे हैं।

0: करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं।
1: स्वामी बख्शन्द तो
0: की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत। संगत कलाकार होंगे ढोलक पर वीरेंद्र कुमार, तबले पर आयुष, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राकेश कुमार। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 का।

आज सुबह 10:35 पर लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज सुनिएगा सुषमा व्यास के गाए गढ़वाली लोकगीत। ढोलक पर सुधांशु बिष्ट, तबले पर सैकत मंडल, हुड़का पर गोविंद सिंह, बांसुरी पर रुक्मेश नौटियाल और हारमोनियम पर आयुष सेमवाल संगत करेंगे। कार्यक्रम जनानों का वास्ता प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत आज सुनिएगा अपनी माटी अपनी पहचान विषय पर माटी कला बोर्ड परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा से बातचीत।

आज रात 8 बजे अंग्रेजी वार्ता में आज का विषय होगा लिविंग इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, और वार्ताकार होंगी मिसेस अनुभा देशपाल। सुबह 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में आज सुनिएगा बच्चों में पोषण और विकास विषय पर डॉक्टर गौरव मखीजा से संकल्प मिश्रा की बातचीत।

सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे सुबह 9 बजे और व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 11 बजे। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा जगमोहन जोशी।

0: फिर हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी
0: श्री रामचरितमानस गान FM 100.5 MHz पर, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख
1: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतस्य UPI इत्यस्य वैश्विक विस्ताराय आह्वानं कृतवान्। सः वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रम् आहूतवान् यत्
0: आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत। संगत कलाकार होंगे ढोलक पर वीरेंद्र कुमार, तबले पर आयुष, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राकेश कुमार। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 का।
1: व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकार
0: पर लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज सुनिएगा सुषमा व्यास के गाए गढ़वाली लोकगीत। ढोलक पर सुधांशु बिष्ट, तबले पर सैकत मंडल, हुड़का पर गोविंद सिंह, बांसुरी पर रुक्मेश नौटियाल और हारमोनियम पर आयुष सेमवाल संगत करेंगे। कार्यक्रम जनानों का वास्ता प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत आज सुनिएगा अपनी माटी अपनी पहचान विषय पर माटी कला बोर्ड परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा से बातचीत।

0: आज रात 8 बजे अंग्रेजी वार्ता में
1: ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतत् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य
0: और वार्ताकार होंगी मिसेस अनुभा देशपाल। सुबह 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में आज सुनिएगा बच्चों में पोषण और विकास विषय पर डॉक्टर गौरव मखीजा से संकल्प मिश्रा की बातचीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा की वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है।

0: डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एरिना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: रीटरेटिंग हिज कोर फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड यूपीआई एज द अल्टीमेट टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सक्सेसफुली पेनिट्रेटिंग एरियाज इग्नोर्ड बाय ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड दैट इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड फर्मली विद श्रीलंका इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अंडरलाइनिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड फेथ। Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. A report.
3: The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centers, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Nutrition Month 2026 will highlight dietary diversity and adequate protein, fresh hot-cooked meals at Anganwadi centers, community ownership and accountability, education for nutrition and early childhood development, and completion of 10 years of the Pradhan Mantri Matrivandan Yojana. The inaugural event in Varanasi will feature a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences, and a dialogue between the Union Minister and Anganwadi workers. Union Minister of State Savitri Thakur and the State's Minister for Women's Welfare, Child Development and Nutrition Baby Rani Maurya will also be present. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. The state government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Anganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share of helpers. Following this revision, Anganwadi workers will receive a total honorarium of 12,000 rupees per month, while the helpers will receive 6,000 rupees per month. The enhanced honorarium will be effective from September 2026.

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आप सुन रहे हैं देशभक्ति फिल्मी गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत भी पराग की आवाज़ में है, फिल्म है केसरी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव ने अभियोजन विभाग की समीक्षा की, अधिकारियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म नीति की हुई सराहना, तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाई राज्य में फिल्मांकन की रुचि। उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की दिशा में उम्मीदें बढ़ी। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करने का दिया आश्वासन। प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ दल सर्वेक्षण को चमोली तथा उत्तरकाशी के लिए रवाना। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुमाऊं दौरे की तैयारियों की मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। हल्द्वानी में 10 सितंबर को गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अभियोजन विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न जिलों में अभियोजन से संबंधित मामलों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मामलों के निस्तारण में तेजी लाते हुए अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की दिशा में प्रभावी

0: कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाना है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठकें नियमित और निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजन से संबंधित मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव साउथ में उत्तराखंड के फिल्म नीति और राज्य के खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस को प्रस्तुत किया गया। कॉन्क्लेव में देश विदेश के प्रमुख फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म कमीशन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती वेब्स ओटीटी, उत्तराखंड एफडीसी और महाराष्ट्र एफएससीडीसी सहित विभिन्न प्रदर्शकों ने प्रतिभाग किया। कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के एस चौहान ने प्रतिभाग कर राज्य के फिल्म नीति और शूटिंग की संभावनाओं के संबंध में विचार साझा किए। एक रिपोर्ट।
1: क्लिप के दौरान उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के एस चौहान द्वारा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ वन टू वन बैठकें आयोजित की गईं। इंडिया टॉकीज, स्टोन बीच स्टूडियो, बीटीजीआई प्रोडक्शंस, पारसा पिक्चर, लाइका प्रोडक्शंस, कवि क्रिएशंस, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स सहित कई प्रोडक्शन हाउस ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के प्रति रुचि दिखाई है। कॉन्क्लेव में श्री चौहान द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल की शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्त गेरुला।
0: समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों की प्रतिभा, दक्षता और उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

0: योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक को समयबद्ध रूप से मिलना चाहिए। पौड़ी जिले के बीरोंखाल में श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री महाराज ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने श्रमिकों का आह्वान किया कि शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर उत्तरकाशी कमद अयारखाल बूढ़ा केदार चमियाला घनसाली तिलवाड़ा मोटरमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि प्रस्ताव को संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई और विचारार्थ प्रेषित किया गया है। इस महत्वपूर्ण मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित होने की संभावनाओं से उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिलों के बीच सड़क संपर्क को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह मार्ग चार धाम यात्रा, स्थानीय आवागमन, पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चमोली स्थित सरस्वती ताल तथा उत्तरकाशी स्थित केदार ताल के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ दल रवाना हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेषज्ञ दल ने USDMA, ULMSB, बाबा साहनी पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान NIH रुड़की, SDRF, NDRF तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की संयुक्त भागीदारी से ग्लेशियर झीलों की स्थिति, संभावित जोखिमों तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुआयामी एवं वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में 10 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुमाऊं दौरे और हल्द्वानी में आयोजित होने वाले गौरव सिनानी मिलन कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और पूर्व सैनिकों तथा आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को नमन किया जाएगा। इससे बड़ा संदेश देश में माना जाएगा।
2: इस दौरे से एक नई ऊर्जा यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में आएगी और 2027 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में।
0: जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि राज्य सहकारिता के इतिहास में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने जिला सहकारी बैंकों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सहकारिता चुनाव में आम लोगों ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है। देहरादून में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण आगामी अक्टूबर माह में किया जाएगा। सैन्य धाम में 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी और 28 नदियों का जल लाया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार सीमा पर शहीद होने वाले वीर सैनिकों के पैतृक गांव

0: अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म नीति की हुई सराहना। तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाई राज्य में फिल्मांकन की रुचि। उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की दिशा में उम्मीद बढ़ी। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करने का दिया आश्वासन। प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ दल सर्वेक्षण को चमोली तथा उत्तरकाशी के लिए रवाना। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुमाऊं दौरे की तैयारियों की मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। हल्द्वानी में 10 सितम्बर को गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत। संगत कलाकार हैं ढोलक पर वीरेंद्र कुमार, तबले पर आयुष, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राकेश कुमार।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: वाह जी वाह, इतनी सारी चीजें एक पॉलिसी में संभव नहीं है।
5: संभव है RPLI के साथ। भारत के वे सभी वयस्क जो कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हो या जिनका किसी भी डाकघर अथवा शेड्यूल बैंक में बचत खाता है, वे ले सकेंगे RPLI पॉलिसीज में 10 लाख तक के बीमे का फायदा और साथ में डाक विभाग का भरोसा भी। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग ऑन टू www.indiapost.gov.in। चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जनहित में जारी।
6: सारी निकलकर सामने आई है आपदा के बाद।
7: पापा आज स्कूल बंद है, रास्ते में भूस्खलन हो गया है।
8: बेटा अच्छा हुआ जो तुम समय पर घर आ गई।
7: अच्छा अगर कभी हम भूस्खलन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
8: सबसे पहले घबराना नहीं, भूस्खलन से दूर सुरक्षित जगह पर जाओ, ढलान, टूटे पेड़ और चट्टानों के पास बिल्कुल मत रुकना। और हाँ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वाहन धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए।
7: लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए और निकलना मुश्किल हो तो?
8: ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहो और तुरंत मदद के लिए 112-1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियाँ समय पर मिल सकें।
7: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
8: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: बता दें मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
9: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं मनोज सिंह के गाए कुमाऊनी लोकगीत। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: थे ढोलक पर वीरेंद्र कुमार, तबले पर आयुष, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राकेश कुमार। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब

0: फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
0: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर

श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जय सैकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर

0: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमेरिकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितम्बर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।

0: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है।
2: कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री।
0: तीन गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi.
4: Ki varsha kamzor parte monsoon chakra ko asthayi roop se punarjeevit kar sakti hai. Iske karan sitambar ke uttarad mein desh ke kai bhagon mein bochhare pad sakte hain aur garaj ke sath varsha ho sakti hai. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समेत अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमेरिकी युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
4: और अब आज के समाचार। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए
7: कनाडा दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
4: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से UPI का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री, इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बन
8: न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community.

नमस्कार देहरादून, मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट प्रियंका जैना और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज सुबह एक पल के लिए जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए दूर बर्फ से ढकी चोटियों की, पहाड़ से उतरती नदियों की, देवदार के जंगल और उन पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गाँव की।

ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये है हमारा हिमालय। और आज हिमालय दिवस है। श्रोताओं, हिमालय का रिश्ता केवल उत्तराखंड से नहीं है बल्कि पूरे भारत से है। हम देहरादून में रहते हैं तो मसूरी की पहाड़ियों, सहस्रधारा, चक्राता और आसपास के जंगलों को देखकर हिमालय को महसूस करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हिमालय का असर देहरादून से कितनी दूर तक जाता है? उत्तराखंड से आगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हिमालय भारत की भौगोलिक और पारिस्थितिक व्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज, अलकनंदा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी है। यानी हिमालय पहाड़ों में है लेकिन उसकी जरूरत मैदानों से लेकर पूरे देश तक है। श्रोताओं, हिमालय हमें सिर्फ पानी नहीं देता बल्कि हमारी संस्कृति में भी इसकी बेहद गहरी छाप है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर की आस्था, कितनी ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हिमालय से जुड़ी हुई है। कितने ही लोकगीत, लोक कथाएं और पर्वतीय परंपराएं इन पहाड़ों की गोद में पली बड़ी है। लेकिन आज बदलता मौसम, ग्लेशियरों में बदलाव, जंगलों पर दबाव, अनियोजित निर्माण, प्लास्टिक और बढ़ता पर्यटन, ये सब हिमालय के सामने चुनौतियां हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि पहाड़ बहुत खूबसूरत है, सुकून तो बस इन पहाड़ों में बसता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि पहाड़ों की जिम्मेदारी भी हमारी है? तो श्रोताओं, अगर हिमालय को बचाना है तो खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगली बार जब मसूरी जाएं, चक्राता जाएं या औली जाएं या फिर हिमालय के किसी भी हिस्से में घूमने जाएं, तो एक चीज जरूर साथ लेकर जाएं। जी हाँ, जिम्मेदारी। अपना कचरा वापस लाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पानी बचाएं, स्थानीय प्रकृति और संस्कृति का भी सम्मान करें। तो इसी के साथ श्रोताओं, आप सभी को हिमालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और चलते हैं प्रकृति की ओर और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रियंका जेना के साथ। और अब आपको बता देते हैं आज कार्यक्रम में आगे क्या सुनेंगे आप। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर जानकारी साझा करेंगे साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। हिमालय दिवस पर बातचीत होगी पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से। और अब बढ़ेंगे स्थानीय अखबारों की सुर्खियों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। और अब आप तक पहुंचा रहे हैं स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। सीएम ने शिक्षकों को सम्मानित कर मेधावियों को दी छात्रवृत्ति। कुसुम कांता फाउंडेशन, मंथन वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण पर लोगों को जागरूक करने के लिए सेना में रन फॉर हिमालय कार्यक्रम का आयोजन किया। 10 दिन के इस कैंपेन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के लिए कार्य करने और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए कार्य करना था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने रायपुर स्थित आर्मी फायरिंग रेंज में फलदार एवं जड़ी बूटी वाले पौधों का रोपण किया। बरसात के मौसम में जल एवं मच्छर जनित संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड सरकार ने कोटद्वार नगर निगम को छोड़कर प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में लगभग 116 पार्षदों को मनोनीत कर दिया है। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आप आगे और ले चलते हैं आपको कार्यक्रम के इस अगले गीत की ओर।

0: उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर प्रियंका जीना के साथ। और आज आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती है। उनकी जयंती पर उनके बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं जाने माने साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
2: धन्यवाद आपको भी और आपके श्रोताओं को भी। 9 सितंबर हम लोग भारतेंदु जयंती के रूप में मनाते हैं और बनारस में तो इसका बड़ा आयोजन होता है। दरअसल भारतेंदु के पुरखे पहले मुर्शिदाबाद में रहते थे और व्यापारी थे, वैष्णव थे ये। तो जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का, उस समय ये लोग वहां से, देखा कि बहुत डिस्टर्ब हो गया है क्षेत्र, तो वहां से व्यापार के लिए वो पूरा परिवार चले आए थे। आपको याद होगा कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता की, तो 7 साल के बाद ही उथल पुथल शुरू हो गया था जिसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। ज्यादातर पढ़ाई उनकी हुई है, विभिन्न भाषाओं के उनके अध्यापक होते थे, घर पर आते थे पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी के आते थे, उर्दू के आते थे, संस्कृत के आते थे और कुछ तो उन्होंने अपने से सीखा। जो बंगला, जैसे उन्होंने एक बंगला लेखिका थी, महिला थी, उनसे सीखा और फिर चंद्रिका उपनाम से वो लिखते भी थे, विभिन्न उपनामों से भी वो लिखते थे। जैसे कि रसा के नाम से उन्होंने उर्दू शायरी की, गुजराती में लिखा उन्होंने, बंगला में तो लिखा ही, संस्कृत में बहुत अच्छे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाषा में उन्होंने लिखा वो उसमें एक मास्टरपीस तैयार कर, ऐसा नहीं कि चलताओं की कविता लिखते थे, ऐसा नहीं, जो भी लिखा वो एक मुहर लगा करके आगे बढ़ते थे। तो एक बहुत बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी उनमें। 35 वर्ष की उम्र में इतना लिख देना, हम लोग केवल शंकराचार्य को जानते हैं, आद्य शंकराचार्य को, जो कि 32 साल की उम्र में इतना कुछ काम किया। उसके बाद अगर देखते हैं तो भारतेंदु ही आते हैं जो कि इतने कम उम्र में इतना ज्यादा विशाल परिवेश बनाया और जीवन के हर क्षेत्र में। जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा की बात होती है, अंधेर नगरी को उन्होंने एक दिन में लिखा था। 24 घंटे में लिखना और 24 घंटे के बाद उसका मंचन होना, और मंचन कहाँ हो रहा था, तो दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां जो है वो दर्शक दीर्घा थी और जो नाव है वो बजड़ा, उस बजड़े पर जो है वो नाटक होता था और उसको किया था। इतना जबरदस्त वो व्यंग्य है। जब उन्होंने लिखा था कि ले ब्योड़ा ठाढ़े भये, जो दोहा है अपने से दोहा उन्होंने लिख दिया, और तब उनके पिता ने कहा कि ये तो कवि होगा, कवि की इसमें गुण है सारे, आगे उनको बढ़ाया और वो बढ़ते गए। इतिहास लिखा उन्होंने, धर्म के इतिहास लिखे, और सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजिंग जो उनकी क्षमता थी वो ये कि बनारस में जो साहित्यकार थे उनका एक मंडल बनाया था, भारतेंदु मंडल जिसको कहते हैं, और भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने हिंदी की पृष्ठभूमि तैयार की, खड़ी बोली की पृष्ठभूमि तैयार की। तो हम देखते हैं कि एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लेकिन इन्होंने जो खड़ा कर दिया साहित्य का एक महल, वो महल कभी टूटने वाला नहीं है, बहुत बड़ा उनका योगदान है।
1: तो साहित्यिक योगदान की हम जब उनकी बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं रही?
2: 3 तरह के उनके रचनाएं हैं, एक तो कविता में है, और कविता में उनको उन्होंने करीब 50-60 पुस्तकें हैं जो कि हिंदी कविता की। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि उनकी कविताएं सब जो हैं वो ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि वो कहते थे कि कविता जो है वो ब्रज में ही हो सकती है, खड़ी बोली में नहीं हो सकती। ये उनका अंतिम समय तक यही दृढ़ धारणा थी कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती। तो उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो सब ब्रज भाषा में हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जितना गद्य है वो सब खड़ी बोली में है। तो खड़ी बोली में जो नाटक हैं सब वो नाटक खड़ी बोली में हैं, और उसके बाद जो निबंध हैं उनके वो सब जो हैं खड़ी बोली में हैं। बहुत तरह से भाषाओं का उनका जो रहा कि सभी जो वहाँ की जो क्षेत्रीय उपभाषाएं थी उनको भी समेटा उन्होंने और सबको लेकर के उसने

0: अपने गुजराती में भी वो लिखते थे, और वो बताया कि लिखते थे तो पूरी तरह से मास्टरपीस लिखते थे। वारा दिठेओ नव मुख चंद्र कामण गारा नेणावे वारी श्रवण पाड़िया श्रवणे तब अमृत वेणावे। ये गुजराती का, तो ये तो आप जानते ही, बहुत प्रचलित है निज भाषा, उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बिना अपनी भाषा का ज्ञान के आप नहीं कर सकते कुछ, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया था। आज उनकी जयंती है, मैं उनको नमन करता हूँ।
1: बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से हमारे साथ जुड़े। आपने आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर आज हमारे श्रोताओं संग उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानकारी साझा की, आपका बहुत आभार कार्यक्रम से जुड़ने
0: बहुत
1: के लिए।
0: बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, शानदार एक्शन और कॉमेडी से करोड़ों लोगों में अपनी खास जगह बनाई है, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के खास मौके पर देश भर में मौजूद उनके फैंस की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म ऐतराज़ से ये अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे बात कर रहे थे आज हिमालय दिवस की। हिमालय सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों का नाम नहीं, बल्कि हमारी नदियों का उद्गम, हमारी संस्कृति की पहचान और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। हिमालय दिवस हमें हिमालय से हमारे इस रिश्ते को याद करने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज हिमालय दिवस पर हिमालय दिवस की शुभकामनाओं के साथ आइए अब बातचीत करते हैं पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से।

0: बहुत बड़ी बात है कि यही हमारा मानना है कि इस तरह के आंदोलन देखिए सब अपनी तरफ से चलते हैं। मुझे ही खबर है, मेरे पास बहुत खबरें आ गई हैं देश भर में, विश्वविद्यालयों से, संगठनों से, स्कूलों से, कि जहां हिमालय दिवस को मनाया जा रहा है और इस पे चिंता जताई जा रही है कि हमें आने वाले समय में हर एक का क्या दायित्व तो होना चाहिए, मात्र सरकार तक सीमित न रहे कि इससे बाहर निकल के हम सब क्या करें।
1: बिल्कुल, अगर वर्तमान समय में हम हिमालय की कंडीशन की बात करें तो वो किस प्रकार से है?
0: देखिए हिमालय के हालात हिमालय के कारण नहीं बिफरे हैं। दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हुई, समुद्र तपे, उसका प्रताप है कि हिमालय आज इस हालात में है। आप देखिए ना, हिमालय के राज्यों कब कब बन गए थे, हिमाचल प्रदेश 70-71 से लेके जम्मू कश्मीर उससे भी पहले, तब कभी ऐसा कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ, पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग ने सब तहस नहस कर दिया। हम तो फिर भी सीमित विकास है हमारा, दिल्ली की कल्पना करिए कहां से कहां पहुंच गया। हमने अपने जन जीवन के लिए तो विकास स्थापित करना ही है ना, और तभी पर्यावरण का और मनुष्य का जनजीवन का एक रिश्ता तब बन पाता है। लेकिन क्या हुआ है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण आक्रमण वे हिमालय पे ही हुआ और पर्वतों पे ही हुआ। अब आर्कटिक को देखिए 2040 तक ये कहा जा रहा है कि वो खतरे में जा चुका होगा, होगी ही नहीं बर्फ वहां पे। तो मात्र हिमालय को ना देखे और पोल्स को भी देख लें, तो सब जगह जो असर पड़ रहा है इसे देखा जाए। और तिब्बत की जो घटना हुई है और वहां से नेपाल को झेलना पड़ा या हमारी गंडक और कोसी को, ये समझाने के लिए है कि हिमालय का एक हिस्सा हिलेगा दूसरा भी प्रभावित होगा। और वो ही नहीं, पूरा देश अगर पानी हवा मिट्टी के लिए हिमालय पर है, या बिहार पंजाब यूपी इनकी ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कृपा से है पानी की, तो तब समझ में आएगा कि हिमालय के क्या महत्व है। इसलिए अब हिमालय से बाहर हिमालय की बहस होनी चाहिए जिसका लाभ उठाते हैं, और उनका बदलाव उनके प्रवृत्ति में होना चाहिए। लाइफ स्टाइल है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही
1: तो
0: है।
1: जैसा कि आपने हिमालय के महत्व की बात करी, तो हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि हिमालय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों उसे आज बचाना जरूरी है और क्यों हम उसपे इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं?
0: देखिए 5 करोड़ से लाख ज्यादा लोग हिमालय में बसे हैं। एक तो उनकी सीधी चिंता, हिमालय उनके लिए भी तो बचना ही है। वो मात्र 10% ही हिमालय को भोगते हैं, 90% हिमालय तो दूसरे भोगते हैं। जो गंगा यमुना नहीं होगी, ब्रह्मपुत्र नहीं होगी, तो पानी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसलिए हिमालय को बचा। हिमालय को बार बार मुकुट कहा है और सीमाएं भी कहा है, जो दूसरी सीमाओं से हमको अलग करता है, रक्षा सुरक्षा करता है। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो भी फसलें खाई जाती हैं, जो भी सब्जी खाई जाती है या फल खाए जाते हैं, उसका बहुत बड़ा हॉटस्पॉट हिमालय ही रहा है। दूसरी बात कि ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन जो देश दुनिया में आए हैं, उसके लिए हिमालय कृपा है। जड़ी बूटियां आप ये मान के चलिए कि जो एक बहुत बड़ा संसाधन है, चरक का नाम ही लिया जाता है, हिमालय की जड़ी बूटी संजीवनी जो रामचरितमानस में है, ये सब यहाँ के भंडार है। और सबसे बड़ी बात यह है, संस्कृति और सभ्यता जो हिमालय की है वो अद्भुत है। और स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वो तो यही है, ऋषि मुनियों ने तो यही जाप किया, किसी को भी कुछ मिला हो तो यही से प्राप्त है। तो हिमालय के उपकार बहुत है, वो क्वांटिफाई भी नहीं की जा सकते, अकाउंटिंग नहीं की जा सकती क्या क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, देश दुनिया में हिमालय की उपस्थिति हमको एक तरह का ऐसे संतुलन में बांधे हुए है, ये गवर्नर है क्लाइमेट का, समुद्र गवर्नर है, दो ही हैं दुनिया में जो क्लाइमेटिक गवर्नर है, और इन दोनों के बीच में दुनिया पलती है। मानसून चलेगा तो दिल्ली तर होगा, यूपी तर होगा, और नीचे दक्षिण भारत समुद्र से चलता है। इसलिए हिमालय एक तरह का सब कुछ है, और इसलिए हिमालय का रहना मात्र हिमालय के लोगों के लिए नहीं है, हमसे ज्यादा तो उनके लिए है जो हिमालय भोगते हैं। तो इसको समझना है कि आज ज्यादा आवश्यकता है। हिमालय की तरफ जब आपदाएं आती हैं तो हिमालय की रिजैलिटी, इनएक्सेसिबिलिटी और बड़ी चर्चाएं होनी जाती हैं, पर्यावरणीय, ये खराब हो गया, सो खराब हो गया, किसने किया खराब, क्या हिमालय के लोगों ने किया हिमालय को खराब? हिमालय इसलिए कि जीवन शैली जो दुनिया की, अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, उसके कारण समुद्र तप गए और ये बारिश कब आई।

0: जम्मू कश्मीर उससे भी पहले, तब कभी ऐसा कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ पिछले दो दशकों में, ग्लोबल वार्मिंग ने सब तहस नहस कर दिया। हम तो फिर भी सीमित विकास है हमारा, दिल्ली की कल्पना करिए कहां से कहां पहुंच गया। हमने अपने जनजीवन के लिए तो विकास स्थापित करना ही है ना, और तभी पर्यावरण का और मनुष्य का जनजीवन का एक रिश्ता तब बन पाता है। लेकिन क्या हुआ है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण आक्रमण हिमालय पे ही हुआ और पर्वतों पे ही हुआ। अब आर्कटिक को देखिए 2040 तक ये कहा जा रहा है कि वो खतरे में जा चुका होगा, होगी नहीं बर्फ वहां पे। तो मात्र हिमालय को न देखे और पोल्स को भी देख लें तो सब जगह जो असर पड़ रहा है इसे देखा जाए, और तिब्बत की जो घटना हुई है और वहां से नेपाल को झेलना पड़ा या हमारी गंडक और कोसी को, ये समझाने के लिए है कि हिमालय का एक हिस्सा हिलेगा दूसरा भी प्रभावित होगा। और वो ही नहीं, पूरा देश अगर पानी हवा मिट्टी के लिए हिमालय पर है, या बिहार पंजाब यूपी इनकी ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी कृपा से है पानी की, तो तब समझ में आएगा कि हिमालय के क्या महत्व है। इसलिए अब हिमालय से बाहर हिमालय की बहस होनी चाहिए जिसका लाभ उठाते हैं, और उनका बदलाव उनके प्रवृत्ति में होना चाहिए। लाइफ स्टाइल है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
1: तो जैसे कि आपने हिमालय के महत्व की बात करी, तो हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि हिमालय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों उसे आज बचाना जरूरी है और क्यों हम उस पर इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं।
0: देखिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग हिमालय में बसे हैं, एक तो उनकी सीधी चिंता हिमालय उनके लिए भी तो बचना ही है। वो मात्र 10% ही हिमालय को भोगते हैं, 90% हिमालय तो दूसरे भोगते हैं। जो गंगा यमुना नहीं होगी, ब्रह्मपुत्र नहीं होगी, तो पानी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसलिए हिमालय को बचा। हिमालय को बार बार मुकुट कहा है और सीमाएं भी कहा है, जो दूसरी सीमाओं से हमको अलग करता है, रक्षा सुरक्षा करता है। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो भी फसलें खाई जाती हैं, जो भी सब्जी खाई जाती है या फल खाए जाते हैं, उसका बहुत बड़ा हॉट स्पॉट हिमालय ही रहा है। दूसरी बात कि ग्रीन रिवोल्यूशन व्हाइट रिवोल्यूशन जो देश दुनिया में आए हैं उसके लिए हिमालय कृपा है। जड़ी बूटियां आप ये मान के चलिए कि जो एक बहुत बड़ा संसाधन है, चरक का नाम ही लिया जाता है, हिमालय की जड़ी बूटियों संजीवनी जो रामचरितमानस में है, ये सब यहाँ के भंडार है। और सबसे बड़ी बात यह है संस्कृति और सभ्यता जो हिमालय की है वो अद्भुत है, और स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वो तो यही है। ऋषि मुनियों ने तो यही जाप किया, किसी को भी कुछ मिला हो तो यही से प्राप्त है। तो हिमालय के उपकार बहुत है, वो क्वांटिफाई भी नहीं की जा सकते, अकाउंटिंग नहीं की जा सकती क्या क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, देश दुनिया में हिमालय की उपस्थिति हमको एक तरह का ऐसे संतुलन में बांधे हुए है। ये गवर्नर है क्लाइमेट का, समुद्र गवर्नर है, दो ही हैं दुनिया में जो क्लाइमेटिक गवर्नर है, और इन दोनों के बीच में दुनिया पलती है। मानसून चलेगा तो दिल्ली तर होगा, यूपी तर होगा, और नीचे दक्षिण भारत समुद्र से चलता है। इसलिए हिमालय एक तरह का सब कुछ है, और इसलिए हिमालय का रहना मात्र हिमालय के लोगों के लिए नहीं है, हमसे ज्यादा तो उनके लिए है जो हिमालय भोगते हैं। तो इसको समझना की आज ज्यादा आवश्यकता है। हिमालय की तरफ जब आपदाएं आती हैं तो हिमालय की इनएक्सेसिबिलिटी और बड़ी चर्चाएं होनी जाती हैं, पर्यावरणीय ये खराब हो गया, सो खराब हो गया, किसने किया खराब, क्या हिमालय के लोगों ने किया हिमालय को खराब। हिमालय इसलिए कि जीवन शैली जो दुनिया की, अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो ग्लोबल वार्मिंग कर दी है उसके कारण समुद्र तप गए, और ये बारिश कब आई।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म थी आए दिन बहार के। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, साथ और समर्थन जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता है। जब कोई अपना हमारे साथ खड़ा होता है तो आधे रास्ते की कठिनाइयाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। मुश्किल वक्त में जो हाथ थामे रखे वही सच्चा सहारा होता है। कठिन परिस्थितियों में साथ देना ही रिश्तों की असली परीक्षा है। अकेले हम कम कर सकते हैं पर साथ मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है हमराज।

श्रोताओं, हम अक्सर या तो बीते हुए वक्त के बारे में सोचकर पछताते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। इस चक्कर में हम आज को खो देते हैं। जो बीत गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन सीख लेकर आगे ज़रूर बढ़ा जा सकता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए कल की चिंता में भी हमें नहीं रहना चाहिए। आज और अभी क्या है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:20 हुए हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मजरूफ सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, फिल्म मेरे जीवन साथी से। किशोर कुमार की आवाज़ है, संगीत है RD बर्मन का।

श्रोतों, कव्वाली एक ऐसी सूफी डिवोशनल संगीत फॉर्म है जो दिलों को और रूह को सुकून देती है। कव्वाली की शुरुआत सूफीवाद से हुई थी। इसका मकसद संगीत के जरिए ईश्वर और उसके बंदों के प्रति मोहब्बत को जाहिर करना है। एक ऐसे ही बॉलीवुड कव्वाली आपको सुनवाते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी भारत के सबसे महान और वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो हर तरह के जज्बात को आसानी से बयां कर देता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत पेश कर रहे हैं फिल्म आशा से।

0: रखने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म है मेरे सनम।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सेहत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए बच्चों में पोषण और विकास विषय पर डॉक्टर गौरव मखीजा से संकल्प मिश्रा की बातचीत।
1: नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव मखीजा, जो कि बच्चों के रोग के विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। भारत का इस समय टारगेट है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा हेल्दी देखें, जिससे न सिर्फ उनका, उनके परिवार का भविष्य सुनहरा हो, बल्कि देश का भी भविष्य सुनहरा हो। जब शुरुआती कुछ दिनों की बात करते, हम मान सकते हैं 6 महीनों की बात करते हैं, उस समय बच्चों के लिए पोषण कैसा होना चाहिए, बच्चों के विशेषज्ञ के रूप में आप क्या सलाह देंगे?
2: देखिए, जब हम पहले 6 महीने की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल आधुनिकता आगे चली आ रही है, लोग माँ का दूध जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ तो अब अपना रही हैं कि माँ का दूध पिलाएं, पर हम जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज इन चीज़ों से दूर भागते हुए चले जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले 6 महीने में मैं इसके ज़रिए जागरूक करना चाहूँगा सभी लोगों को, नई बनी माताओं को, कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है और माँ के दूध से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। माँ का दूध फाइनेंशियली एक तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ डाइजेस्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो माँ का दूध सबसे अच्छा पोषण प्रदान कर सकता है। और माँ के दूध लेने से बहुत सारी तकलीफ़ें, आंतड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ़ें बच्चों की, वो दूर रह सकती हैं। माँ का दूध लेने से बच्चों में इन्फेक्शंस के बचाव हो सकते हैं। तो पहले 6 महीने में तो हमें ये बांध लेना चाहिए कि अनटिल अनलेस कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो जिसमें नहीं पिलाया जा सकता, है ना। कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिसमें नहीं पिलाया जा सकता, पर अनटिल अनलेस डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया है तो माँ का दूध ही पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को मिले।
1: डॉक्टर साहब, माँ के पहले दूध की जब बात होती है तो कोलेस्ट्रॉल की बड़ी चर्चा है, लोगों में इस बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है, इसे सुपर फूड भी कई बार कहा जाता है, क्यों इसे सुपर फूड कहा जाता है?
2: देखिए, ऐसा है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं ना, तो उसका जो रंग है वो काफ़ी मैला होता है। मैला, शायद मैं गलत ही शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर लोगों से जो मैं सुन पाया हूँ उसमें यह है कि हाँ, वो दूध गंदा निकल रहा है, मैला निकल रहा है, जिसके कारण कुछ लोग ये सलाह दे देते हैं कि इसको हटा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फैट कंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। डेफिनेटली हर बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिलना चाहिए, हर बच्चे को। आप ये देखें तो पहले WHO कहता था कि नवजात शिशु पैदा हुआ, सिजेरियन से हुआ तो 2 घंटे के अंदर अंदर दूध पिला दें, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ तो 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिला दें। बट आज की अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो कोई भी बच्चों का डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि 2 घंटा या 1 घंटा, आपको यही समझाया जाएगा कि नवजात शिशु पैदा हुआ, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी लें, साथ के साथ ब्रेस्ट पे अटैच कीजिए और दूध जो है वो बच्चे को साथ के साथ मिलना चाहिए।
1: थोड़ा इसको और विस्तार में समझाइए कि इम्यूनिटी माँ के दूध से बच्चे को किस तरीके से मिलती।
2: देखिए, माँ के दूध में ऐसे कई सारे तत्व हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये

0: सिंपली हमारी एंटीबॉडीज़ ही हैं जो हमें डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं। कुछ लैक्टोफेरिन नाम के भी कंपोनेंट्स होते हैं जो बाकी किसी इन्फेक्शन से बचाव देते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे स्टेफाइलोकोकल, इनके अगेंस्ट भी माँ के दूध में ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो इन इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। हम कितना ही डब्बे का दूध माँ के दूध से मिलता जुलता बना लें, हम सारे के सारे ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स डालने की भी कोशिश कर लें, पर फिर भी जिस मात्रा में माँ के दूध में है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, उस हिसाब से बना पाना, वैसा दूध बना पाना अभी बहुत दूर है। इसीलिए माँ के दूध से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें, चाहे वो लैक्टोफेरेंस की बात करें, चाहे वो एंटी स्टेफाइलोकोकल स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स की बात करें, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा माँ के दूध में ही रहेगी।
1: कई बार विभिन्न कारणों से मैं पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन पाता है। वैसे में आज के समय में आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके से बच्चे के पोषण को पूरा किया जा सकता है?
0: काफ़ी दिलचस्प सवाल है और आए दिन ओपीडी में यही चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि इस माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालना है कि कई बार माँ का दूध नहीं बनता है, क्योंकि जब ये दिमाग में जाता है कि माँ का दूध नहीं बन सकता है तो वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक है। माँ के साथ उनकी मदर या उनकी सासू माँ वो बच्चे को रोता हुआ देखती हैं और माँ को ये समझाने लगती हैं कि हाँ अभी दूध कम बन रहा है। जितनी बार आप एक नई बनी माँ को ये समझाएंगे कि हाँ अभी दूध कम बन रहा है, उतना उसका स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होगा। दो हार्मोन्स हैं जो दूध को बनाने में और सिक्रीट करने में मदद करते हैं। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो बनाने में मदद करता है, और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट करने में मदद करता है। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा शरीर में तो सिक्रीट ही नहीं होगा दूध। और ऑक्सीटोसिन एक हैप्पी हार्मोन है, स्ट्रेस से, चिंता से, या फिर सिर्फ इतने सुनने मात्र से कि तुम्हारा दूध तो कम पड़ रहा है बच्चे से, ये स्ट्रेस इंड्यूस करता है और एक नेगेटिव फीडबैक देता है ऑक्सीटोसिन को। जब ऑक्सीटोसिन कम होगा तो दूध का सिक्रीशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये विश्वास रखें कि अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, और हेल्दी से मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे ना, माँ कमज़ोर हो जाएगी, तो भी माँ का दूध उतना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। माँ का दूध तभी कम निकल पाता है जब माँ बिल्कुल बेहद, कुदरत ने बनाया ही ऐसा है कि बेहद माँ की कमज़ोरी के बाद ही दूध पे असर पड़ेगा। तो अगर एक एवरेज मदर भी है जो अपने न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी, उसका दूध उतना ही अच्छा बनता है जितना अच्छा एक बहुत हेल्दी मदर का बनता है। कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छा पानी पीना, जितना हाइड्रेट करेंगे खुद को, क्योंकि ब्रेस्ट से मिल्क निकलना है तो हाइड्रेशन स्टेटस पे डेफिनेटली असर पड़ता है। माँ के दूध पीने से दूध नहीं निकलता, बट यस, माँ को हाइड्रेट रखने से, अच्छे जूसेस पीने से, नारियल पानी पीने से, या खुद को अच्छे से पानी लेते रहने से दूध डेफिनेटली बेटर बनेगा, और मन में विश्वास रखने से, बार बार अटैच करने से। और दूसरा जो मैंने बोला प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन तभी बनता है जब आप छाती को खाली करें। तो दूध बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है दूध निकालना। तो अगर अभी बच्चा शुरुआत में, देखिए बच्चा भी अभी पैदा हुआ है, क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो पहले से आता है, बट कभी कभी माँ को शुरुआत में पकड़ना नहीं आता है, बच्चा ढंग से अटैच नहीं हो पाता है, तो इस सब प्रतिक्रिया में खुद को ट्रेन करने में थोड़ा समय लग जाता है, और ऐसे में छाती जो है वो एनगॉर्ज होने लगती है। इस समय पे अगर हम बार बार बार बार दूध को निकालते रहें तो वो दूध बढ़ेगा ही, ठीक है। छाती से दूध का निकलना इज एब्सोल्युटली प्रोपोर्शनल डिमांड टू सप्लाई। जितना डिमांड करेंगे उतना सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर में 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं भी पिला पा रहे हैं तो प्लीज पंप कीजिए।
1: नवजात बच्चे को कब ठोस पदार्थ का

0: ध्यान से सोचना चाहिए। पहला, जो हम ठोस आहार दे रहे हैं वो कितना गाढ़ा खाना मिले, तो खाना उतना गाढ़ा मिले जितना गाढ़ा टूथपेस्ट होता है। अब टूथपेस्ट की दो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, पहला वो वॉश बेसिन में जब गिरता है ना वो छपाक करके गिरता है, वो फैलता नहीं है, वो नाली की तरफ नहीं भागता है, और दूसरा जब उसको उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ है, उसके अंदर कोई सॉलिड क्रम्प नहीं है। तो जब भी हम बच्चे का खाना शुरू करें बिल्कुल प्यूरी की तरह बनाएं, गाढ़ा बनाएं, ताकि चम्मच से जैसे नीचे गिरे तो छपाक जैसा गिरना चाहिए। दूसरा जो हमें ध्यान देना है कि बच्चे को खिलाना कितनी बार है जब हमने वीनिंग शुरू करनी है। तो देखिए, पेट अभी बहुत छोटा है बच्चे का 6 महीने पर, तो हमें मल्टीपल टाइम्स मतलब दिन में 4 से 5 बार खिलाना पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम 3 बार ही पहले दिन से ही 5 बार खिला दें, तो ये समझने की कोशिश करें कि पहले दिन से ही 5 बार खिलाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे पेट भी बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा खा पाएगा तो ड्यूरेशन भी जो है वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। पर वहीं बच्चा 6 महीने से 1 साल है तो 5 बार खिलाइए, 1 साल से 2 साल के बीच में है तो 4 बार खिलाइए, 2 साल के बाद वही 3 बार खिलाना शुरू कर दीजिए। अब मैं वो जो 3 बार या 4 बार या 5 बार बोल रहा हूँ, इसमें मैं स्नैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम भी जब खाते हैं तो 3 बार खाने के बीच में चाय ले लेते हैं, तो वो स्नैक्स की गिनती मत कीजिए खाने में, और माँ का दूध भी इससे अलग रखिए। बट उसके अलावा 6 महीने के बाद 5 बार खिलाने की कोशिश कीजिए।
1: बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले 1000 दिन, यानी लगभग जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता है, बहुत से डॉक्टर्स हैं उनके कहे अनुसार सभी माँ बाप बच्चे को पोषण देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही पोषण का शरीर पर सही असर हो रहा है, इस बात को डॉक्टर्स कैसे नापने की कोशिश करते हैं? डॉक्टर्स के पास बीच बीच में किस तरीके से सलाह लेने के लिए जाना चाहिए, और जो पोषण बच्चे को मिल रहा है उसी हिसाब से बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए?
0: देखिए, ऐसा है कि WHO ने इस ड्यूरेशन के लिए जो आप बता रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ चार्ट्स बनाए हैं। ये ग्रोथ चार्ट्स वेट के लिए अलग हैं, लेंथ के लिए अलग है। पहले 2 साल में हम बच्चे के लिटा के लंबाई लेते हैं, इसलिए इसको लेंथ कहते हैं, हाइट नहीं बोलते हैं, और इवन हेड सरकमफेरेंस के लिए अलग हैं। उसके भी अलावा हमारे लेंथ के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए उसके चार्ट भी अलग हैं, जिसमें हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं बच्चे का वज़न लेके उसकी लंबाई के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार, और उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस दी हुई हैं, है ना। उसमें जब हम प्लॉट करके करते हैं तो WHO ने स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर भी एक मेडिकल पर्सनल के लिए हो गया, WHO ने बहुत ब्यूटीफुली उसमें लाइनों को रंगित किया है। बीच में हरा रंग डाला है, फिर पीला रंग डाला है, फिर लाल रंग डाला है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक सिग्नल के 3 कलर होते हैं। वही 2 पीले रंगों के बीच में यदि बच्चा आ रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। हम इन चीज़ों से क्रूडली देख के सभी बच्चों को डेफिनेटली ग्रोथ चार्ट्स भरने चाहिए, और ग्रोथ चार्ट्स भर के हमें ये पता होना चाहिए एज पेरेंट्स कि बच्चा हमारा किस स्टैंडर्ड डेविएशन, किस पीली रेखा और हरी रेखा, या हरी रेखा और उससे पीली ऊपर वाली पीली रेखा के बीच में लाई कर रहा। जब हम ये बार बार हर 3 महीने पे नापते चलते हैं तो एक तो हम पेरेंट्स में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कि यस, बच्चे की वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है। पिछली बार भी मान लीजिए इन्हीं रेखाओं के बीच में था, अभी भी रेखाएं ऊपर बढ़ गई तो बच्चे का वजन भी ऊपर बढ़ गया। तो एक तो वो कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा दिलाता है कि यस, जो हम खिला रहे हैं वो बहुत अच्छा खिला रहे हैं। दूसरा, इन ग्रोथ चार्ट्स का एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए थोड़ा भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, चाहे वो नॉर्मल रेंज में है, पर पिछली बार से डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया, तो भी एक उत्सुकता जगाता है माँ बाप के बीच में कि ऐसा क्या गड़बड़ हुआ, क्या हमारा न्यूट्रिशन गड़बड़ हो रहा है, या बच्चे को कुछ बीमारी हुई है बीच में, या वायरल हुआ था उसके कारण बीच में बच्चे ने खाना छोड़ दिया था और वो कम होना शुरू हुआ। तो उस समय वे डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें और सलाह लें कि कहीं कुछ मेजर इशू तो नहीं है। तो ग्रोथ चार्ट्स ना केवल आपको कॉन्फिडेंस देंगे बट आपको अलार्म भी करेंगे जल्दी से जल्दी किसी आने वाली तकलीफ के।
1: डॉक्टर गौरव मखीजा, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों के पोषण और उसके विकास से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने आकाशवाणी के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बच्चों में पोषण और विकास विषय पर डॉक्टर गौरव मखीजा से संकल्प मिश्रा की बातचीत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर 12:30 पर जनानों का वास्ता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा अपनी माटी अपनी पहचान विषय पर माटी कला बोर्ड परिषद की

अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा से बातचीत, और रात 8 बजे अंग्रेजी वार्ता में आप सुनेंगे मिसेज अनुभा देशपाल से वार्ता। विषय रहेगा लिविंग इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अभियोजन विभाग की समीक्षा बैठक ली, अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म नीति की हुई सराहना, तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने राज्य में फिल्मांकन की रुचि दिखाई। उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की दिशा में उम्मीदें बढ़ी। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ दल सरस्वती ताल तथा केदार ताल सर्वेक्षण के लिए हुए रवाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुमाऊं दौरे की तैयारियों की मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। वे कल हल्द्वानी में गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनावों में भाजपा के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। देहरादून में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण आगामी अक्टूबर माह में किया जाएगा। सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम में 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी और 28 नदियों का जल लाया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से कहा कि उत्तराखंड भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक को समयबद्ध रूप से मिलना चाहिए। समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों की प्रतिभा, दक्षता और उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री से भेंट कर राज्य में आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की और स्वास्थ्य विभाग ने जल और मच्छर जनित रोगों से खतरे को लेकर एडवाइजरी जारी की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 10:02 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं, इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्थी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेही नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थात लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% हो

0: feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:11 होने को हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम में। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं के और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म है बचना ए हसीनों।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। श्रोताओं, इस गीत की खासियत यह है कि इस गीत को खुद लीड एक्टर्स यानी ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल ने अपनी आवाज़ दी है। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पर्वतराज हिमालय हमारे अमूल्य

धरोहर है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक धरोहर का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमालय उत्तराखंड के जीवन का आधार भी है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, नदियाँ, खेती और लोगों का जीवन हिमालय से गहराई से जुड़ा है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीने की परम्परा को आगे बढ़ाया है। आज जरूरत है इस परम्परा को आधुनिक विकास के साथ जोड़ा जाए। पहाड़ों में ऐसा विकास हो जहां स्थानीय लोगों को रोजगार और सुविधाएं मिले और प्रकृति पर अनावश्यक दबाव भी ना पड़े। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिले में जर्जर भवनों के चिन्हीकरण का कार्य पूरी गंभीरता और तकनीकी मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन को जर्जर अथवा गिरासू घोषित करने से पूर्व उसके सभी तकनीकी और संरचनात्मक पहलुओं का गहन परीक्षण किया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके और जन सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निगम और नगर का परिषद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रांतर्गत जर्जर भवनों का चिन्हीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराएं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए ने रायपुर स्थित आर्मी फायरिंग रेंज में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और जड़ी बूटी वाले पौधों का रोपण कर हरित क्षेत्र के विस्तार की पहल की है। खास बात यह है कि एमडीडीए ने पौधारोपण को महज एक अभियान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पौधों की सुरक्षा और उनके आगामी 2 वर्षों तक रखरखाव की भी जिम्मेदारी तय की है। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए रोपण क्षेत्र के चारों ओर लोहे की वायरिंग भी कराई गई है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि देहरादून की पहचान सिर्फ एक विकसित शहर के रूप में नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और स्वच्छ वातावरण से भी है। भारतीय जनता पार्टी की आज हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक रामपुर रोड स्थित एक होटल में होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देहरादून में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण आगामी अक्टूबर माह में किया जाएगा। सैन्य धाम में 1,734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी और 28 नदियों का जल लाया गया है। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सीमा पर शहीद होने वाले वीर सैनिकों के पैतृक गांव में शहीद के नाम पर रोड और विद्यालय का नाम रखने तथा शहीद की मूर्ति स्थापित करने का कार्य तत्परता से कर रही है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव साउथ में उत्तराखंड के फिल्म नीति और राज्य की खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस को प्रस्तुत किया गया। कॉन्क्लेव में देश विदेश के प्रमुख फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म कमीशन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती वेब्स ओटीटी, उत्तराखंड एफडीसी और महाराष्ट्र एफएससीडीसी सहित विभिन्न प्रदर्शकों ने प्रतिभाग किया। कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के एस चौहान ने प्रतिभाग कर राज्य की फिल्म नीति और शूटिंग की संभावनाओं के संबंध में विचार साझा किए। समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों की प्रतिभा, दक्षता और उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घड़ियाल ने बताया कि आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में चयनित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चमोली स्थित सरस्वती ताल तथा उत्तरकाशी स्थित केदार ताल के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ दल रवाना हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में

0: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े और शरीर को ढकने वाली ड्रेस पहने। इससे मच्छरों के काटने से बचने में मदद मिलती है।
1: सर, यानी शॉर्ट्स या छोटी बाजू के कपड़ों की जगह पूरी बाजू की ड्रेस पहननी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
1: और घर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए
0: गमले, कूलर।

0: पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा न होने दें।
1: सर समझ गए, पूरी बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
0: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं सुषमा व्यास के गाए गढ़वाली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं सुषमा व्यास के गाए गढ़वाली लोकगीत। पेश है कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुषमा व्यास और राजेंद्र रविंद्र व्यास के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर सुधांशु बिष्ट, तबले पर सैकत मंडल, हुड़का पर गोविंद सिंह और बांसुरी पर रुक्मेश नौटियाल और हारमोनियम पर आयुष सिंहवाल। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, गांव भोपाल जिला मुजफ्फरनगर यूपी से जनेश्वर कुमार अहलुवालिया, बालेश्वर कुमार, राकेश कुमार अहलुवालिया, डुगू नंदू किट्टू, कुलश्रेष्ठ सारांश वेदांत और साथ में चिक्कू अहलुवालिया। देहरादून हती बड़कला विजय कॉलोनी से हैं उषा, अवनी, माया और संगीता। कस्बा गुन्नूर यूपी से फारूक अली खान, फेजी, फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं गणेशपुरगंज डिंडवारा से फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सलफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिपा, कभी छिपा, ईशान, पूजा परिहार, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन शाह, नवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। कृष्णा कॉलोनी हांसी से हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू और बबीता मिगलानी। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया से महेंद्र रविंद्र और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है, आप हैं छत्तीसगढ़ की दंतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और साथ में रुद्र वर्मा। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम वो कौन थी।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चैतन्य मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से ही राहुल खुराना, रचिता केशोर साथ में हृदयन खुराना, देहरादून चक्राता रोहित गा मोहल्ला से सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश दीक्षा चावला, तनु नानू, किट्टू रानी गुप्ता और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गांव मीरावाला जिला मुजफ्फरनगर से अमरपाल अवाना, अनुजवाना, शुभम अवाना, शिव गुड्डू कालू प्रधान जी और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं मैसेज श्रोता लिखते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव नंदिनी ने, हनीषा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास और रजन साहू। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है करौली राजस्थान से ही अनिल गौड़, गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई डीशा, परवीन तमन्ना और साथ में आशिक हुसैन अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से ही कन्हैया लाल और इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरी नास नह साथ में मोहम्मद कैफ अंसारी। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दुविया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय। सुनते आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, आवाज़ें ही लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: समय 11:32 और 21 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद मोहम्मद अदीब अब्दुल हनान जीनत जावेद नाहिद रानी आयत सिकंदर अली और साथ में मोहम्मद आदेश। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं करणवीर हाउस बुच्चू के चेबर टिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर करण दपिंद्र वरिंदर कुलदीप सिंह एकम दमन और अभिज्योत। साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं जमशेदपुर नया पारा भिराई से आप श्रोता मैसेज लिखते हैं बसंत ठाकुर सरोज रानी ईश्वर राय और साथ में पप्पू ठाकुर। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास करुणा आयुष विवेक बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज अनिता सोमी सोमो और साथ में है मानस राज। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता मोगा पंजाब से जगदीश सिंह मठाड़ी और वीर पाल कौर। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है मैसेज है श्रोता लिखते हैं यवतमाल विदर महाराष्ट्र से संतोष खड़सी और विनोद खड़सी। शेरवानी स्कूल गंज डिडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना और साथ में आलिया अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं ये मैसेज है श्रोता हमें लिखते हैं राही नगर गंज डिडवारा से आप है शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा अनु खान अदनान खान फैजान खान ताबिश और साथ में है आबाद खान। रानीगंज बंगाल से आप है रविंद्र और इंद्र दिल्ली से हैं ध्वनि और सानवी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाहन नाजिया इब्राहिम और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं मैसेज लिख भेजा है रेलवे रोड गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन नज्म बेगम नाज शबनम अनवर और साथ में भाभी सरिता गौतम। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

लिख भेजा है आपने जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले और इनके परिवारजन। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जी टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं खरसावा झारखंड से शुक्र नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और साथ में इनके परिवारजन। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश शर्मा, मंजू, निशांत कौशिक की, दीपाली युवान और साथ में आर के राजा। और साथ ही मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं श्रोता वाइल्ड फील्ड बंगलुरु से ही भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र बोधी और कुलदीप कंवल। साथ ही मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है पूर्णा जंक्शन से ही मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और साथ में है सुलोचना भगत, कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नजीब अंसारी। साथ ही मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है आप ही सोंगा मगर रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन और साथ में इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम है फागुन, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम वर्षा फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और साथ में मसरूर अली। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रजित कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और साथ में गुरु शब्द सिंह राहुल। शांति निवास लहेगांव रेलवे अमरावती से दीपक कुराड़े, आशीष कुमारी, कल्पना और वंदना कुरहाड़े। रुड़की से हैं रीना शर्मा, नोहर हनुमानगढ़, राजस्थान से विनोद कुमार और साथ में SP खींचड़। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है कलानौर से ही नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और बैंक शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं गुन्नौर से आदिल, कमर, तस्दीक अली और साथ में मुजफ्फर अली। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है गांव ककराली जिला पंचकुला से वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, अंजलि, नेहा और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और साथ में ही माहिरा नूर। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजिया, नासिर, साजिद और शाहिद। साथ ये मैसेज श्रोता लिखते हैं गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद बुजावर, सभी है मिखाइल और साथ में है जैनब बुजावर। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिला नाचानी, प्रगति, बाबू भाई और साथ में है भारती देवी। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आशिकी।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। जिला नांदेड़ एताला से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल शुभम प्रसाद दंडो, दुर्गेश्वरी राखी जायसवाल और साथ में तृप्ति। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू, तरुण श्रीनिका और साथ में श्रीनिजा। और ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, फरमाइश हमें लिख भेजी है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटी, साक्षी, अंजलि करवा बाला साहेब, जय श्री महतेरे, रामनिवास अग्रवाल और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। पटियाले रोड गंज जुडवारा से इरफान कुरेशी, रिहान फैजान शहादत और साथ में इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और साथ में प्रभुलाल बागरी मोहल्ला अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भवन एना सत्यनारायण कपिल शोभा और साथ में इनके परिवारजन। और ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, फरमाइश हमें लिख भेजी है नागचू रोड संजय कॉलोनी खंडवासी अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक जिया उल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला बानी, लोकेश पायल जोशी और साथ में इनके परिवारजन। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहाना सूरीहान। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है मजनू कटीला से कमल बालूचा, बधु और सागर बालूचा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गांव कैरो जिला तरन तरन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाश, दीप और इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है बोरावकी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा। और इसी गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश। सुनते आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं तहसील लोडगंज डिडवारा से की है चिराही गुड़िया बेगम वकील प्रेमी और साथी हमाद जमील। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं श्रोता शाहजी नगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या सविता भाकरे। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और बैग भाटिया, और इसी गीत को सुनना चाहे गांव दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा बानवी तनवी लक्ष्य सोनी बोनी ऋतिक और साथ में ही बलवीर सिंह। जसपुर और दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महमूद मोहम्मद समीर अंसारी मोहम्मद वारिस और बेटी अलशिफा परवीन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, आप हैं श्रोता वाराणसी से हैं आजिन कुमार सिंह वंदना सिंह विनती विनायक सिंह मोहिनी सिंह और साथ में प्यारी प्यारी कोको रानी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सिंह उमर सिंह महेश्वरी देवी सोनू बोंडराल रश्मि प्रियंका सृष्टि बनियारु शौर्य और साथ में है दिनेश। और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, फरमाइश लिख भेजी है आपने चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल संगीता रानी पप्पू मैक सुनीता अर्जुन साथ में इनके परिवारजन। सुनते आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

0: करते रहे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: आइए श्रोता बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं तहसील लोडगंज डिडवारा से की है चिराही गुड़िया बेगम वकील प्रेमी और साथ में हमाद जमील। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं श्रोता शाहजी नगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या सविता भाकरे। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जज्जर से बिट्टू भाटे रीटा रजत और बैग के भाटिया और इसी गीत को सुनना चाहे गांव दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा बानवी तनवी लक्ष्य सोनी बोनी ऋतिक और साथ में ही बलवीर सिंह। जसपुर और दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महमूद मोहम्मद समीर अंसारी मोहम्मद वारिस और बेटी अलशिफा परवीन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, आप हैं श्रोता वाराणसी से हैं आजन कुमार सिंह वंदना सिंह विनती विनायक सिंह मोहिनी सिंह और साथ में प्यारी प्यारी कोको रानी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सिंह उमर सिंह महेश्वरी देवी सोनू बोंड्राल रश्मि प्रियंका सृष्टि बनियारू शौर्य और साथ में है दिनेश। और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, फरमाइश लिख भेजी है आपने चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशी दिल संगीता रानी पप्पू मैक सुनीता अर्जुन साथ पीने के परिवारजन। सुनते आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सर को झुकाए,
1: द्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू

0: visit to India from today till the 15th of this month at the invitation of the Vice President CP.
1: अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ दल सरस्वती ताल तथा केदार ताल सर्वेक्षण के लिए हुआ रवाना और देहरादून में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण आगामी अक्टूबर माह में किया जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए जगमोहन जोशी की गाई चंद गजलें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: सुगम संगीत के अंतर्गत आप इस समय सुन रहे हैं जगमोहन जोशी की गाई गजलें।

0: अरे अरे रुको, आगे सड़क पर बरसाती नाला बह रहा है।
1: पानी तो ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, कार निकाल लें क्या?
0: बिल्कुल नहीं, तेज बहते पानी को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा और तेज हो सकता है।
1: तो अब क्या करें?
0: यही सुरक्षित जगह पर रुकते हैं और पानी कम होने का इंतजार करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से रास्ता बदलने या सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी मिले तो उसका पालन करेंगे।
1: सही कहा। और आपात स्थिति के लिए मोबाइल चार्ज है?
0: हाँ, टॉर्च, पानी और जरूरी सामान भी साथ है। जरूरत पड़े तो 112-1070 या 1077 पर मदद के लिए कॉल करेंगे। सचेत ऐप से भी मौसम की जानकारी लेते रहेंगे।
1: एक गलत फैसला और मुसीबत बड़ी हो सकती है,
0: इसीलिए याद रखो, सड़क पर पानी दिखे तो रुकना है, जोखिम नहीं लेना है।
1: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जगमोहन जोशी की गायी गजलें। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब इन्हें सुनेंगे कार्यक्रम जनानों का वास्ता।

नमस्कार दगड़ियों, आपरे बोली भाषा कार्यक्रम जननुक वास्ता में सभी दीदी भूलियों काकी बोलियों ते मी ममता बड़ोला पर सेवा सौंप पैटाणु छो। उम्मीद कर दू कि मेरी सभी बहनी राज खुशी भेल और मैं भी माता रानी से सभियों को स्वस्थ स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना कर दू कि माता रानी हम सभी पर अपर कृपा दृष्टि हमेशा बने कन राखे। दगड़ियों, अपर और अपर कुटुंबदारी को भलू ढंग से ध्यान रखनो, किला की बहनियों ऐ सुख साल तो बरखा भी बिजाऊ होना छो न। यह लग्न के इंद्र देव जी भी बिसर गए, इनके अब बस काल खत्म हो गए और भादों का महीना शुरू हो गया। तो ये वक़्त पर खूब घाम लगे छे और हमार घर गांव में हमार बुजुर्ग बोले छे पहले कि भादों महीना घामन गोला खाल में सूख जान बल। पर कुजान कुजान दगड़ियों, ये सड़क दीदा भी क्या ठहरे छो, पर खैर ये माँ कौर भी क्या सकदा हम। अब और चंट चितौल भेगन रोनो, अति बरखोनो, जग जगह बहुत नुकसान हो छो। दगड़ियों, खाण पीण में साफ सफेद ध्यान रखना, साग भुजी फल फूल साफ धोए धहकन खाण, सड़ियों गलियों चीज कते नहीं खाण। ये बगत पर ही सबसे ज़्यादा बीमारी होने का डर रही और डेंगू खतरा भी ये भरी ज़्यादा हो, और बुखार जुखाम तो चलने लग गया छो। पैणियों, पोषण माह भी चलू छो, ये माँ गर्भवती जननी दूध पिलाण वाली माँ और छोटे नन्यालों को माँ जो कुपोषण का शिकायत हों वह दूर करना को सरकार योजना तो चलानी छ, और योजना का ई बारह थीम छ हमर आंगनबाड़ी हमर जिम्मेदारी। तो मेरी दीदी भूली बुना वेल की स्वास्थ्य के बारे में हमारे बहनी ज़्यादा ही बतेल, तो अब आज कार्यक्रम के बारे में बते दी। हाँ दगड़ियों, जरूर बतौल, आज हिमालय दिवस छ तो ये पर घड़े माँ चर्चा करूल, और आज आप सुनोल एक भेंटवार्ता। ये भेंटवार्ता का विषय छ अपनी माटी अपनी पहचान। वार्ताकार छुनु माटी कला बोर्ड परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा वालिया और ऊँक दगड़ में बातचीत करना छन विनय ध्यानी जी। तो दगड़ियों, गीत लोकगीत अपुर बैणियों तक खूब सुनोला, जो कि गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी में राल, और सुनोला कुछ विशेष रैबार भी। बाकी आप और मी छुईबत लगाने रोला, दगड़ा दगड़ी कई विषयों पर चर्चा और करला। तो अपर बहनियों तय बता दिए, इनके अपर कार्यक्रम की शुरुआत कर दो एक गढ़वाली नंदा गीत से। तो दगड़ियों, नरेंद्र सिंह नेगी स्वर में सुन दो यू सुंदर सी नंदा गीत।

0: स्थिति में सुरक्षित स्थान पर हो और तुरंत मदद के लिए 112-1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियाँ समय पर मिल सकें।
1: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
0: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: बता दें, मलबा हटाने का काम।
3: नमस्कार दगड़ियों और अंतरबार से पहल सुन छे आप गड़वली गीत, और गीत से पहल अपन गीतक बाद जो सुनू और गीत स्वर दियो छे नरेंद्र सिंह नेगी के। तो दगड़ियों, गीत नंदा देवी छाई जिनकी मेरी सभी बहनी जननी छिन की ये बगत पर नंदा राज जात यात्रा शुरू हो गया। यह यात्रा हमारी प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक पदयात्रा होंगी। यह यात्रा 12 साल में एक बार होंगी और इन यात्रा तय हिमालय के महाकुंभ भी बोले जान। यह लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होंगी। मान्यता च कि मान नंदा उत्तराखंड की बेटी च और उतें अपर मैत बटेन ससुरा सकुण विदा करे जांद कैला सकुणी जख भगवान शिव जी के निवास स्थान च। मां नंदक विदाई बड़ी धूमधाम से होंगी। सभी लोग ऊँत ही विदा करना कुण जानन, छोड़ना कुण जानन और यू पल बहुत भावुक होंद। और ये पवित्र यात्रा के नेतृत्व चौसंगिया खाड़ू कर दू। ये खाड़ू ते माँ नंदा देवी के रैबरे मने जान जगुण हम संदेश वाहक बोल दें और माँ के मार्गदर्शक भी ये खाड़ू कर दू। दगड़ियों, आप सुना दो पर दगड़ियों ते आज एक भेंट वार्ता जय के विषय च अपन माटी अपन पहचान। और वार्ताकार छन माटी कला बोर्ड परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा वालिया और उन दगड़ में बातचीत करना छन विनय ध्यानी जी। तो बहनों, सुनदा युवा भेंट वार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं छू विनय ध्यानी और कार्यक्रम में मेरा दगड़ मेहमान छन श्रीमती अनुराधा वालिया, जो कि उत्तराखंड में माटी कला बोर्ड परिषद की उपाध्यक्षा छे। तो अनुराधा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपको। और माता बहनों का खातिर यू माटी कला बोर्ड कुछ कारण, क्या गतिविधि, क्या उद्देश्य, क्या चे
5: जी? पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप बतौलूँ कि जो बोर्ड च हमार माटी कला बोर्ड परिषद, यो मुख्यतः जो मिट्टी से जुड़ा हुआ जितना भी लोग छी जो मिट्टी का काम कर दी, वो काम हम कुछ और चीज भी मान ले 80% मिट्टी च, 20-30% कोई भी चीज मिली च, तो वे से हम काम कर दो। और विशेषता किले की माटी कला बोर्ड ची हु, तो जो कुमार भैची हमारा मतलब जो घड़ा और कुल्लड़ हांडी आजकल आप देखना होला बहुत ज्यादा प्रचलन ये चल गया, होटल माफ था यही चीज मिलल। पहले जो कुमार भाई काम करता था बड़ी तेजी से काम करता है, उत्साह से काम करता था, लेकिन अब वे बहुत शिथिलता आ गया किले की बीच में दूसरी सरकार राई उन वे पर ध्यान नहीं दिया ही, और जो कुमारों की समस्या छाई वो दूर नहीं भाई, जे कारण ये जो काम जो थोड़ा विलुप्त सी उन बेस गए।
4: कुल मिला कि हमारी माटी से जुड़े वो कलाकार, वो हुनरदार लोग जो कि अपन व्यवसाय अपन रोजगार ये से चलाना चाह, खास करेगी हमन पिछला कई समय से देखा कि

0: भी, भट्टी भी आप एक बिजली का आ गया, मिट्टी मतनक मशीन भी आप बिजली का आ गया, और चाक भी आप इलेक्ट्रॉनिक आ गया। यानी कि इंसान का शारीरिक श्रम जो बहुत ज्यादा लघु छा, जैसे परेशान भी रहना चाह वो भी दूर होना चाहे। अब हमारी सरकार, मैं तो उपाध्यक्ष हूँ, तो जब मैं यूं लोगों के बीच में घूमू, यूं समस्या मिल दिया, तो मिल प्रधानमंत्री जी और जो हमारा मंत्री जी विभागीय मंत्री भरत सिंह चौधरी जी, ऊ दगड़ मेरे बातचीत आई, कुमारुल में था बहुत आवेदन दी कि भाई हम तो ये परेशानी चे, आप हमारी ये परेशानी दूर करो, विशेषकर हमारी परेशानी जो चे मिट्टी
1: माटक
0: चे,
1: से।
0: माटक चे।
1: तो एक समस्या जो कि माटी कला से जुड़ी चे, वह सबसे बड़ी जो सबसे बड़ो साधन चे, वे की ही कमी होनी चे, और वे पर लगातार प्रयास होना चिन बोर्ड द्वारा, कि जो हमारा ये कलाकार भय छन, हमारा कुम्हार भय छन, यूं तय हम बगत परमाट पहुंचा सका। एक सवाल और अनुराधा जी, जो हमारे माता बहनी छन, वो कई कलाओं से जुड़िया छन, यानी सिर्फ माट से हम घाड़ू या भांडा ही नहीं बनाना, बल्कि हम कलाकृतियों में भी बहुत सुंदर प्रयोग करना। तो ये से जो कलावंत लोग छन, जो मूर्तिकार लोग छन, उन तभी कुछ मदद मिले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी की कुमारों बात कुमार खनते डिपार्टमेंट छे छे, ये कन तो बहुत उल्लेखनीय कदम बिठाना सरकार द्वारा, विशेषकर जो प्रयास हमारो भी और सरकार भी यो कि हम मिट्टी बिल्कुल फ्री कर दियो,
1: अच्छा।
0: कि अब अर्ध कुंभ भी आने वाले छे, अर्ध कुंभ थाई हम पॉलिथिन मुक्त करना चाहो, हमारी सरकार भाजपा की सरकार, हमारा इस ये प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो वो सर माटा काम हो, मतलब माटा की सारा भांडा बर्तन सब कुछ माटा को,
1: ठीक।
0: तो यो तो छही चे। दूसरा आपल प्रश्नकार की भाई हमारी माँ बहनी जो आपल दया करू की SHG ग्रुप यानी स्वयं सहायता
1: समूह जो
0: समूह
1: चन। हाँ।
0: सबसे ज्यादा उत्तराखंड में चे, और जगह भी वाला पर मैं उत्तराखंड में रहें, तो मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो एक बहुत ज्यादा ग्रुप ची और बहुत ज्यादा रोजगार उठाई मिलू चे, कई समूह स्वयं सहायता समूह इन ची जो मूर्ति बनन दी बहुत बड़ी बड़ी दिया बनाना ची बंती बंती का, तो वो क्या कर दी मिट्टी दगड़े लुगदी मिलन दी
1: अच्छा।
0: और मिट्टी दगड़े गोबर भी मिलन दी, तो ये से वो बहुत अच्छा अच्छा कलाकृति बनाना चाहिए, मूर्ति बनाना चाहिए, दिया बनाना चाहिए, और जो एक एक मैजिकल बैल करी कुंद मतलब वो बैल भी बनाना चाहिए, मतलब जगह अभिनव प्रयोग हो सकती वो सब करना चाहिए, तो माटी कला बोर्ड स्वयं सहायता समूह बीच में जानू चु उधर रजिस्टर करूं से, और जदगा भी प्रयास वाल ऊ स्वयं सहायता समूह था भी जोड़ला और

0: सीखनी च तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ो, रजिस्ट्रेशन करा, और जब आप को रजिस्ट्रेशन हुआ लू तो सरकार का जितना भी नया नया कदम हुआला वो आप तक पहुंचला और आप था एक रोजगार मिले।
1: आत्मनिर्भर महिला का खातिर और खास करी की जितना भी ई कला से जुड़िया लोग छन, माटी कला बोर्ड से जुड़िया लोग छन, उन पंजीकरण कराण बहुत जरूरी है, तभी वे का बहुत सारा लाभ उन मिल सकते हैं। अनुराधा जी ने हम तो ये जानकारी दे और ये का दगड़ी उन बताए कि हाँ आने वाले समय में यो जो बोर्ड परिषद है यू नए नए कुछ न कुछ कार्यक्रम माता बहनों का बीच में हमारा ये जो कामगार छन यू का बीच में लिया ले इन उम्मीद च हम तय। अनुराधा जी आप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा आपक दगड़ माटी कला बोर्ड परिषद का बाबत हुए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: बहनियों अभी सुनना चाहे आप भेंट वार्ता और भेंट वार्ता का विषय छे अपन माटी अपन पहचान। वार्ताकार छाई माटी कला बोर्ड परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा वालिया और उदगढ़ में बातचीत करना छे विनय ध्यानी जी। तो बहनियों वार्ता बहुत सुंदर छे और आप श्रोता दगड़ियों तय ले जाऊँ कुमाऊँ को छोड़ और मीना बिस्टक स्वर में सुना दूँ कुमाऊनी गीत।

दगड़ियों अभी सुना छे आप मीना बिस्टक आवाज़ में कुमाऊनी गीत। बहणियों आप ते हमारे यू कार्यक्रम कन लग दू। यू कार्यक्रम हमार अपर दीदी भूलियों के वास्ता ही बनू छ। तो अपर सुझाव चिट्ठी में लिख कर हमको भेज सकदा। और हमारे चिट्ठी पता छ कार्यक्रम जनानु के वास्ता अनुभाग ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून निकट रिस्पना पुल। और हमार पिन नंबर छ 248001। बहणियों आज एक विशेष दिन बीच मने जानू छ हिमालय दिवस। चूंकि हर साल 9 सितंबर को मने जान ये ते मनाना खास कारण यू चु कि हम ते याद रखन कि हिमालय को हम सभी प्राणियों को वास्ता क्या महत्व छ। हिमालय में बन बन के जड़ी बूटी छन और कई प्रकार के पशु पक्षी जानवर को घर छ हिमालय। तो जौं कि ये वातावरण से बहर रह कर जीवित रहन मुश्किल हो जाने तो हिमालय बचाना बहुत जरूरी छ। हिमालय ते हमार एशिया के वाटर टावर भी बुले जान।

जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की

0: करने का काम तेजी से चल रहा है। मेला प्रशासन ने बरसात समाप्त होते ही निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। मेलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों को बताया कि सड़क, पुल, घाट, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा और स्वच्छता समेत सभी प्रमुख कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। वर्षाकाल समाप्त होते ही अस्थायी व्यवस्थाओं के निर्माण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों में गुणवत्ता, सुरक्षा, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।
1: अभी तक अराउंड 700 करोड़ के कार्य हमारे अप्रूव हुए हैं, जिसमें की स्थायी प्रवृत्ति और अस्थायी प्रवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति के काम है। और अभी क्योंकि हम लोग जिस तरह से काम प्रोग्रेस करते हैं उसी हिसाब से फिर हम बजट भी रिलीज कर रहे हैं विभागों को। अभी जो हमारे कार्य जो मेजरली ऑनगोइंग है वो सारे के सारे टेम्पररी नहीं परमानेंट काम है, जिसके अंदर हमारे बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, घाट के काम चल रहे हैं, रोड के काम चल रहे हैं, फुटपाथ बनाने के काम चल रहे हैं। और अस्थायी प्रवृत्ति के काम जो हमारे होते हैं, सबसे पहले हम लेवलिंग ड्रेसिंग करते हैं जो की हमारी स्टार्ट हो गई है, हमारे 32 सेक्टरों में लेवलिंग ड्रेसिंग, और उसके बाद फिर हमारे टेंट बनाने की कार्रवाई, बस स्टैंड बनाने की और बाकी चीजें।
0: केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्त कार्यालय की ओर से देहरादून में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक और जीएसटी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य योगेंद्र गर्ग ने अधिकारियों के राजस्व और प्रशासनिक प्रदर्शन की समीक्षा की तथा करदाता सुविधाओं और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान मंडल और रेंजों के पुनर्गठन, कर्मचारियों के पुनर्संतुलन और प्रमुख स्थापना संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री गर्ग ने व्यापारिक प्रतिनिधियों की व्यवहारिक समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और स्थानीय स्तर की समस्याओं के तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जीएसटी संवाद करदाता और कर प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने और जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नियमित अंतरालों पर जारी रहेगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगई ने कल देर शाम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता, सुरक्षा, कर्मचारियों की ड्यूटी और मरीजों को मिल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्थाओं के नियम

0: छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कबड्डी और मुर्गा झपट में प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। संयोजक दीप जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि दी जाएगी, साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
1: पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के क्रीड़ा मैदान में न्याय पंचायत हल्याणी का स्थानीय जनप्रतिनिधि स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सभी बच्चे इसमें न्याय पंचायत स्तर पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें क्रमशः 300, 200 और 150 रुपए का पुरस्कार है। कुल 96,200 रुपए की पुरस्कार की धनराशि छात्र छात्राओं को खिलाड़ियों को दी जाएगी। इसके बाद ये विधानसभा स्तरीय और उसके बाद सांसद स्तरीय और उसके बाद मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी, सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा, पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देख कर सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: Hello, children. How are you?
2: We are good, sir.
3: I am good, sir.
4: We are good.
1: How are your parents, brothers, sisters, and grandparents?
2: All are good.
1: All are well? That's nice. And what about your pets?
4: Sir, I have a dog.
5: Sir, we have a cat.
1: Okay. So how does a cat call?
2: Meow, meow, meow.
1: Do you think that pets are very special members of your family?
2: Yes, sir.
4: Sir, my pets are my friends.
5: They are very lovely.
3: My cat is very cute, sir.
1: So nice. Tell me, do you like traveling?
2: Yes, sir.
4: I like to go different places on my holidays.
5: I feel very happy when I go to my grandparents.
1: That's great. How do you go?
5: We go to see grandparents by bus.
1: That's very fine. Will any one of you tell me, how do you travel?
6: We travel by train, sir.
7: I like sitting on the window and to look outside.
1: Okay, anyone else?
8: Once we traveled by plane.
9: It was a great fun.
1: That's very good. What do you like most in the plane?
9: I like to see the clouds.
1: That's so beautiful. Well, so children, we have so many modes of transportation. We travel by bus. We travel by
2: car,
10: train,
11: plane.
12: We travel by boat also.
1: Good. So now let us listen to a beautiful poem which tells us about how do we travel. Would you like to listen?
2: Yes, sir.
1: Okay, children. So I will read this poem and you have to repeat after me. Fine?
2: Yes, sir.
5: Fine.

0: भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूं। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ, हाँ दादाजी, ये ठीक है, ठीक रहेगा।
8: तो चलो।
7: रेल चली भाई रेल चली,
8: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।

0: हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
2: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
2: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
1: बैठो बैठो, जल्दी खड़ो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो।
3: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
0: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
0: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
3: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
0: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक

के पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: or Jawahar Navodaya Vidyalayas will be held tomorrow at the Parliament House complex in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju will preside over the function and distribute the prizes to the prize-winning students and Vidyalayas for their meritorious performance in the competition. The Ministry of Parliamentary Affairs has been organizing youth parliament competitions in Jawahar Navodaya Vidyalayas for the past 30 years. Benchmark domestic equity indices paired losses from the day's lows but remained in the red during the afternoon session today. The Sensex declined 437 points to 75,140, while the Nifty lost 89 points to 23,547 when reports last came in the broader market. At the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices fell 0.3% each a short while ago. Brent crude prices breached the $100 per barrel mark in intraday trade, reaching their highest level in 7 weeks and continuing to trade near those elevated levels. The Ministry of Labour and Employment, in collaboration with the Maharashtra government, will organise a national conference on building and other construction workers, BOCW, in Mumbai on the 11th and 12th of this month. The conference will be chaired by Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandviya. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of the region. Final breaks, finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिक्सानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी

0: जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन

0: अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

0: तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस

0: टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आर्ट शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। सैनिक साथियों, शब्द हैं, मैं या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनका जीवन साहस, संघर्ष, शौर्य और वीरता को दर्शाता है, जो युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विक्टर बत्रा के बारे में। पहले कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

सैनिक साथी विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो माता का नाम कमलकांता है जो शिक्षिका है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की जीपीएस डिग्री से प्राप्त की, साथ ही उच्चतर शिक्षा पालमपुर के केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ ही कराटे और स्पोर्ट्स में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया करते थे। साथ ही इन्होंने दिल्ली में युवा संसदीय प्रतियोगिता में भी राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। सैनिक साथी 1992 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इन्होंने दाखिला लिया और इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर में ये शामिल हो गए और एनसीसी का इन्होंने सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। एनसीसी इकाई में सीनियर इकाई में सीनियर अंडर ऑफिसर का पद इन्होंने प्राप्त किया। साथ ही 1994

सैनिक साथी विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो माता का नाम कमलकांता है जो शिक्षिका है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की जीपीएससी डिग्री से प्राप्त की, साथ ही उच्चतर शिक्षा पालमपुर के केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ ही कराटे और स्पोर्ट्स में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया करते थे। साथ ही इन्होंने दिल्ली में युवा संसदीय प्रतियोगिता में भी राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। सैनिक साथ ही 1992 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इन्होंने दाखिला लिया और इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर में ये शामिल हो गए और एनसीसी का इन्होंने सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। एनसीसी इकाई में सीनियर इकाई में सीनियर अंडर ऑफिसर का पद इन्होंने प्राप्त किया। साथ ही 1994

सैनिक साथियों, जनवरी 1989 में विक्रम बत्रा ने कर्नाटक के बेलगाम में कमांडो कोर्स किया, जिसके लिए सर्वोच्च ग्रेडिंग प्रशिक्षक ग्रेड से इन्हें सम्मानित किया गया। सैनिक साथियों, इन्होंने 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 8 माउंटेन डिवीजन के 192 माउंटेन डिवीजन के तहत कश्मीर में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान को जो प्रशिक्षण था उसे पूरा किया, और इसके बाद इन्हें द्रास जम्मू कश्मीर में जाने का आदेश मिला। और इनके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, पहले सुनवाते हैं ये गीत।

सैनिक साथी, इस प्रकार से कैप्टन विक्रम बत्रा घर में परिजनों को बिना बताए द्रास पहुंच गए और वहां माउंटेन ब्रिगेड की कमान इन्होंने संभाली। और इस तरह से पर्वत पर हमले के दौरान ये राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के लिए रिजर्व में रखे गए। लेकिन सीमा पर संघर्ष जारी था, ऐसे में कैप्टन विक्रम बत्रा ने नेतृत्व किया। और श्रोताओं, सैनिक जिस तरह से कमान संभालते हैं, इस तरह कैप्टन विक्रम बत्रा एक वीर जवान की तरह आगे आई और अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित करने के लिए जैसे इन्होंने ठान रखी थी। और इस संघर्ष में कैप्टन विक्रम बत्रा घायल हो गए और 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारत माता की आंचल में आंखें मूंद ली। और इस तरह से सैनिक साथियों, जय हिंद की सेना के कैप्टन विक्रम बत्रा हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। और 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार ने इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इनके जीवन पर फिल्म भी बनी है शेरशाह, साथ ही इनके जीवन पर कई किताबें भी लिखी हैं। ऐसे वीर सपूत को हम सलाम करते हैं और सुनते हैं फिल्म शेरशाह से ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हिमालय और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत विकासखंड में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सिलोर देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों के 22 राजस्व ग्रामों और 34 तोकों को पेयजल सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो चली है। मेला क्षेत्र के 32 सेक्टरों में अवस्थापना विकास के 126 कार्यों के लिए अब तक करीब 709 करोड़ रुपए लागत की इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तेज गति से किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उधम सिंह नगर जिले की नगर पालिका परिषद की 6 और सिरोली कला के अध्यक्षों और सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। मतदान 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 24 सितंबर को होगी। टिहरी जिले के मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कीर्तिनगर विकासखंड की ग्रामोत्थान परियोजना के तहत संचालित समुदाय आधारित संगठन स्तरीय उद्यमों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। बागेश्वर जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग की ओर से पंचकर्म, योग और शार सूत्र जैसी आयुष सेवाओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3:02 हुए, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण के। फिल्म का नाम था क्योंकि। समीर के शब्दों को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नहीं तराने का ये अगला गीत श्रेया घोषाल, सोनू निगम और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम मैं हूं ना। गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

आप सुन रहे थे मास्टर सलीम। लीला जयश्री थर सुजेंडी मिलो और साथियों को फिल्म का नाम था लव आजकल। गाने नई तरह ने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में कार्यक्रम का यही अगला गीत। फिल्म का नाम है खामोशियाँ। शब्द हैं सईद कादरी के और संगीत जीत गांगुली का है।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत विकासखंड में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सिलोर देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों के 22 राजस्व ग्रामों और 34 सितोकों को पेयजल सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से देशभर में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. प्राग मधुकर धगाते ने सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत निवेदिता घोष का सितार पर बजाया राग भीमपलाजी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शिवाजी गायकवाड़। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कलाकार हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी यानी खिलाड़ी कुमार। जी हाँ, बिल्कुल हमारे श्रोता पहचान गए होंगे कि हमारे आज के कलाकार कौन हैं। हमारे आज के कलाकार हैं अक्षय कुमार, जिनका जन्म का नाम राजीव हरि ओम भाटिया है, तो जिन्हें अक्षय हरि ओम भाटिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 9 सितंबर 1967 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। इनके बारे में हम और भी बातें करेंगे, पहले आपको सुनवाते हैं इनका अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम में ये पहला गीत। फिल्म का नाम है धड़कन।

से इन्हें खेलों में रुचि थी और इन्होंने स्कूली शिक्षा बांटुंगा के डोन बोस्को हाई स्कूल से प्राप्त की। साथ ही इन्होंने कराटे भी सीखा और उच्च शिक्षा के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़कर पिता से मार्शल आर्ट सीखने का अनुरोध किया और ये थाईलैंड चले गए और 5 साल तक ये बैंकॉक में रहे और वहाँ इन्होंने बॉक्सिंग की बारीकियाँ सीखी। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने अभिनेता बनने की ठानी, लेकिन हम श्रोताओं ये भी कहेंगे कि कलकत्ता के एक होटल में इन्होंने शेफ के रूप में कार्य किया, दिल्ली में गहने बेचने का कार्य किया। इसी दौरान किसी ने इन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाव दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी कार्य किया और अक्षय कुमार ने 1987 की फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में पहली उपस्थिति दिलाई। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि श्रोताओं इन्होंने फिल्म अभिनय में कुमार गौरव से प्रेरित होकर अपना नाम अक्षय कुमार रखा था। श्रोताओं पहली बार 1991 में फिल्म सौगंध में ये पहली बार मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। इनके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, पहले सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में एक कलाकार, आज के कलाकार अभिनेता अक्षय कुमार। श्रोतम, वर्ष 1993 में इन्होंने फिल्म अशांत में अभिनय किया, जो फिल्म औसत रही थी, और इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया, और फिल्मों के दमदार अभिनय के बल पर इन्होंने कई फिल्मों में लोकप्रिय अभिनय किए, जिनमें फिल्में रही हैं दिल की बाजी, सैनिक, कायदा कानून, वक्त हमारा है जैसी फिल्में शामिल हैं। और वर्ष 1994 में इन्होंने लगभग 11 फीचर फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मुख्य रही हैं मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, बोरा, ये दिल में लगी, ऐलान आदि। श्रोता, 1995 में फिल्म जगत इनके लिए खुशियाँ लेकर आया, जब इन्होंने खिलाड़ी शीर्षक से कई फिल्मों में अभिनय किया, और इसके लिए इन्होंने प्रसिद्धि भी पाई, जिनमें फिल्में शामिल रही हैं मिस्टर मिसेज, खिलाड़ी, खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 786 आदि। इस तरह से इनके द्वारा अभिनीत फिल्मों को खूब प्रसिद्धि भी मिली। आइए आपको सुनवाते हैं इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार अभिनेता अक्षय कुमार। वर्ष 2000 में इन्होंने कॉमेडी फिल्मों में नजर आए, जो फिल्में रही हैं हेरा फेरी, और इस फिल्म में सफलता के बाद इन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया है। धड़कन फिल्में कैसी रही है, जिनमें इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। साथ ही श्रोताओं, हम इनके करियर की बात को साझा करते हुए आपसे यही कहना चाहेंगे कि खिलाड़ी 420 में इन्होंने सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टंट किए थे, जिनके लिए इन्होंने खूब सराहना प्राप्त की थी, जिनमें एक चलते हुए विमान पर चढ़े और 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़े हुए और विमान से एक गर्म हवा के गुब्बारे पर कूदे, इस तरह से कई इन्होंने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण स्टंट किए हैं, जिन्हें दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। श्रोताओं, इस तरह फिल्मों में इन्होंने जो अभिनय किया है, उस अभिनय को खूब प्रसिद्धि मिली है, और इस तरह इन्होंने फिल्मों में अब तक अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, और साथ ही फिल्मों के लिए इन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, तो 2 बार इन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, अक्षय कुमार आज भी फिल्मों में व्यस्त हैं। उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते और इनके जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए सुनते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में यह अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता अक्षय कुमार। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 5 बजने को है, अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पैंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पैंड्रा रोड तक तीसरी लाइन। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा जो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्त चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय सूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डीजी फिनेक्स, पायोनेक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और URL हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने

2:02 पर और सुबह 10:35 पर हमारे श्रोता कुमाऊनी लोकगीत सुनेंगे नीरजा उप्रेती के स्वर में। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा 11 बजे और कल रात्रि 10:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:12 पर दोपहर पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे उमा तनेजा के स्वर में भजन। हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 12:30 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सुनेंगे चर्चा, विषय है नियंत्रण भावुकता पर। साथ ही फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हामिद पर आधारित रहेगा सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम, समय 2:30। हमारे दैनिक कार्यक्रमों का समय वही युववाणी 5:10 चिट्ठी पत्री एवं लोकगीत ग्राम जगत कार्यक्रम में 5:45 पर और 7:00 कार्यक्रम किसान वाणी। 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत स्लिप डिस्क कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विक्रांत चौहान को आप सुनेंगे कल 8:00। रात्रि 8:15 सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत रूना लैला के स्वर में। इसी के साथ श्रोताओं, हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: शाम ढले तो दिल भी कहे, हर लम्हा कुछ नया सा रहे।
1: कुछ बातें हों, कुछ गीत कहें, ये पल बस आपके नाम रहे। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और आपके दोस्त, मैं हूं सक्षम पंत।
0: और मैं सोनाली कठैत। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। वैसे सक्षम, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारे देश में पैसे ने भी अपना घर बदल लिया है? पहले पैसे वॉलेट में रहते थे और अब वॉलेट की जगह फ़ोन ने ले लिया।
1: हाँ सोनाली, ये बात बिल्कुल सही कही है तुमने। जैसे कभी अगर हम रास्ते से जा रहे हों, कभी चाय पीने का मन कर जाए, तो उसकी पेमेंट हम लोग ऑनलाइन ही कर देते हैं। ऑफिस पहुंचकर कैब का फेयर देना हो, या फिर शाम को घर जाते जाते ग्रॉसरी का सामान लेना हो, तो पैसे कहीं दिखाई ही नहीं देते, लेकिन लगातार इधर उधर घूमते ज़रूर रहते हैं। आज के भारत में कई लोगों के लिए सवाल ये है कि क्या पैसा है तुम्हारे पास? तो शायद इसका जवाब हाँ नहीं, बल्कि UPI है, ये हो सकता है।
0: हाँ सक्षम, और इसी बदलाव को हम कहते हैं कैशलेस सोसाइटी। एक ऐसा बदलाव दोस्तों जो धीरे धीरे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुल सा गया है। लेकिन हाँ, हर सुविधा अपने साथ एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आती है। पता है, डिजिटल पेमेंट ने पैसे भेजने का तरीका इतना आसान और तेज़ कर दिया है कि कई बार तो हम बिना सोचे ही क्लिक कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और यही जल्दबाजी डिजिटल फ्रॉड का एक मौका बन जाती है। इसलिए दोस्तों, पेमेंट की स्पीड के साथ साथ थोड़ी अवेयरनेस भी ज़रूरी है। और डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, बस कुछ सेकंड रुकिए और सोचिए।
0: जब भी आप पेमेंट करें तो QR कोड स्कैन करने के बाद रिसीवर का नाम और अमाउंट ज़रूर चेक करें। कभी भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। और एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि UPI पिन पैसे रिसीव करने के लिए नहीं, बस पेमेंट ऑथराइज करने के लिए होता है।
1: इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी इंसान आपको पिन डालने या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में लेने के लिए उकसाए, तो पहले रुकिए और वेरीफाई कीजिए। वहीं अगर बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी आप कहीं भी डाल रहे हैं, तो हमेशा ऑफिशियल एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर किसी वेरीफाइड कस्टमर केयर चैनल का ही इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल इंडिया में स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी

0: चलाना नहीं, उसे सेफली इस्तेमाल करना भी है। लेकिन हाँ दोस्तों, कैश को पूरी तरह भूलना भी सही नहीं है, क्योंकि अब देखिए फ़ोन में तो कभी भी बैटरी, नेटवर्क या टेक्निकल इशू आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा इमरजेंसी कैश रखना आज भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि स्मार्ट सोसाइटी वही है जहाँ टेक्नोलॉजी सुविधा दे लेकिन अवेयरनेस और चॉइस हमारे हाथ में हो।
1: हाँ, तो सोनाली मुझे ये लगता है कि शायद जो कैशलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसे सुविधा या फिर खतरे ऐसे सवालों के बीच में बांधना थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि खतरा टेक्नोलॉजी से कम है पर केयरलेसनेस से अगर हम उसका इस्तेमाल करें तब ज़्यादा है।
0: जी हाँ दोस्तों, कैश से कैशलेस तक का ये सफ़र सुविधा और टेक्नोलॉजी की एक नई कहानी है। बस अवेयर रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट हो, सबसे स्मार्ट पेमेंट वही है जो हम सोच समझ कर करें। चलिए अब कार्यक्रम की एक म्यूजिकल शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म डिशूम से जॉनिता गांधी और अमित मिश्रा की आवाज़ में।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विज्ञान जगत का हमारा खास सेगमेंट। इसमें आज हम बात करने वाले हैं 21वीं सदी की 3 सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके बिना शायद हमारी लाइफ अधूरी सी लगे, और वो है वाईफाई।
6: जी हाँ, वही वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमारी डिवाइसेस रेडियो वेव्स की मदद से राउटर से

0: की तीन सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके बिना शायद हमारी लाइफ अधूरी सी लगे, और वो है वाईफाई।
1: जी हाँ, वही वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमारी डिवाइसेस रेडियो वेव्स की मदद से राउटर से

0: सैटेलाइट जिसे इसरो ने विकसित किया है, और ये तो इसके नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि इसका मुख्य काम है पृथ्वी को ऑब्जर्व करना।
1: जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 4 सितंबर 2026 को GSLV F-17 ने इसे लॉन्च किया था। भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन में ये एक बेहद अहम कदम माना जाया है, और ये इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारत का ये पहला इमेज सैटेलाइट है जिसे हमने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया है।
0: बिल्कुल, ये पृथ्वी की सरफेस, एटमॉस्फेयर और अलग अलग नेचुरल या मैन मेड चेंजेस से जुड़ा डेटा कलेक्ट कर सकती है दोस्तों, और इस तरह की जानकारी का एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और प्लानिंग के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अच्छा सोनाली, पहले हम ये पूछते थे कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचे, और अब हम ये पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी के बारे में जो डेटा है वो हम अंतरिक्ष से सेफली कैसे कलेक्ट कर पाएंगे।
0: पता है सक्षम, आज की दुनिया में डेटा की क्वांटिटी ना लगातार बढ़ रही है, और उसके साथ बढ़ रहा है सिक्योरिटी का सवाल। फिर यहीं से हम पहुंचते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन तक, एक ऐसी तकनीक जिसमें लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की क्वांटम प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश का पता लगाया जा सके।
1: जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य भविष्य में जितना ज़्यादा सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, और ये जो होता है वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए किया जाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्वांटम स्टेट्स की विशेष प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके कीज़ बनाने की कोशिश की जाती हैं, जिससे कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी द्वारा अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो तो उसे सही समय पर डिटेक्ट किया जा सके।
0: हाँ, और बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, डिफेंस, हेल्थ केयर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर

नेटवर्क बनाना है, और ये जो होता है वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए किया जाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्वांटम स्टेट्स की विशेष प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके कीज़ बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी द्वारा अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो तो उसे सही समय पर

0: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू

0: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
1: और घर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए
0: गमले, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा न होने दें।
1: सर समझ गए, पूरी बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
0: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों कभी कभी

0: जिन्होंने अपनी अपनी भाषा को एक अलग पहचान दी।
1: जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिगर मुरादाबादी साहब की, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। 1890 में मुरादाबाद में जन्मे जिगर मुरादाबादी एक मशहूर उर्दू पोएट थे और इनका असली नाम अली सिकंदर था।
0: और पता है सक्षम, मोहब्बत, दर्द और ज़िंदगी के एहसासों को अपनी गज़लों में वो इतनी खूबसूरत और आसान अंदाज में पिरोते थे कि उनकी शायरी सीधा दिल तक पहुंचती थी।
1: सही कहा सोनाली, शोला-ए-तूर, दाग-ए-जिगर और आतिश-ए-गुल उनकी चर्चित रचनाओं में से

0: दोस्तों, एक तरफ जिगर मुरादाबादी साहब ने उर्दू के जज्बातों को हर एक इंसान तक पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। भाषा अलग थी, अंदाज अलग था, लेकिन दोनों ने अपने शब्दों से ऐसा असर छोड़ा जो वक्त के साथ भी धुंधला ना हो पाया।
1: क्योंकि सक्षम शायद साहित्य की सबसे खूबसूरत बात यही है कि लेखक चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द लोगों के बीच हमेशा जिंदा रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत फिल्म आवारापन से सुजैन डीमेलो की आवाज़ में।

0: सोनाली, एक सवाल है जो मैं हमारे सारे दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आज के समय में मान लो हम पढ़ने बैठे और हमारे सामने ना कोई कठिन सा सवाल आ जाए जो हमारी समझ में आ नहीं रहा है, तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप हम क्या लेते हैं?
1: सक्षम मुझे तो लगता है ना कि हम में से ज़्यादातर लोग सबसे पहले तो इंटरनेट पे इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, और अगर वहाँ से भी कुछ बात समझ ना आए तो यूट्यूब तो है ही, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में इतना सारा स्टडी का कंटेंट जो

0: मिल जाता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और शायद इसी वजह से YouTube अब सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे फिजिक्स से लेकर प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री से लेकर पॉलिटिकल साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर नई लैंग्वेजेस के कोर्सेज तक लगभग हर विषय पर हज़ारों एजुकेशनल वीडियोस उपलब्ध हैं।
0: तो अब दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है कि क्या YouTube हमारा शिक्षक बन सकता है? तो इसका जवाब शायद है कि हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ।
1: दोस्तों YouTube एक शानदार लर्निंग टूल के साथ साथ एक डिजिटल क्लासरूम की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ जो छात्र हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को कहीं पे भी रोक सकते हैं, कोई हिस्सा अगर उन्हें समझ में ना आए तो वो उसे दोहरा भी सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो अलग अलग शिक्षकों से एक ही टॉपिक को अपने अंदाज में सीख सकते हैं।
0: और सबसे एक खास बात तो ये है दोस्तों कि सीखने के लिए हमें किसी महंगे इंस्टीट्यूशन में भी जाने की अब शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से अच्छे एजुकेशनल कंटेंट तक हम खुद ब खुद पहुंच ही जाते हैं।
1: लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सावधानी है वो बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि YouTube पर मौजूद हर जानकारी सही या फिर विश्वसनीय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
0: इसीलिए तो सक्षम हमें किसी भी एजुकेशनल वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय सोर्स, टीचर की क्रेडिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को ज़रूर चेक करना चाहिए। क्रॉस चेकिंग सच में बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ, और साथ में एक और बड़ी चुनौती भी है सोनाली, जो हम में से ज़्यादातर लोग फेस करते ही होंगे, वो है डिस्ट्रैक्शन।
0: बिल्कुल
1: अब हम YouTube खोलते तो हैं ये सोच के कि हाँ हम ये टॉपिक देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे और सब चीज़ें समझ के फिर फ़ोन को वापस साइड रख देंगे, लेकिन जैसे ही हम नीचे कोई रिलेटेड वीडियो देख लेते हैं या फिर कोई रेकमेंडेड वीडियो देख लेते हैं तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर पढ़ाई की वीडियो से ध्यान हटकर वहाँ चला जाता है।
0: इसीलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी ज़रूरी है शकम। तो पहले तो एक टॉपिक तय कर लीजिए दोस्तों, फिर उसकी रेलेवेंट वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको डूम स्क्रॉलिंग करने का टाइम ही ना मिले।
1: याद रखिए दोस्तों कि जो YouTube है वो शिक्षक का विकल्प तो नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ ये आपका एक शानदार लर्निंग पार्टनर ज़रूर बन सकता है। तो देखिए, समझिए, सवाल पूछिए और अपनी लर्निंग को थोड़ा स्मार्ट बनाइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मैं हूं ना से, जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम और साबरी ब्रदर्स ने।

0: तो दोस्तों, आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा ज़रूर बताइए। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल, और हमारा पिन कोड है 2480001।
1: दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com, और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने विचार हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए हमें यानी सोनाली और सक्षम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: धरहीन हमार वास्ता जीवन दान दिन वाल एक सगत पहाड़ च।
1: जी
0: ये पहाड़ की उपयोगिता, ये की अस्मिता, ये की जो अस्तित्व च वही था बचाए रखण आज बहुत जरूरी है। यहाँ खातिर ही आज का दिन पर तमाम विद्वान, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक लगातार चर्चा करना छन। हम भी चर्चा करना चाहूँ अपन ये
1: जी
0: कार्यक्रम में कि साहब जो बदल दो जलवायु परिवर्तन च और जो मानव का हस्तक्षेप च वो सबसे बड़ो संकट च हिमालय का खातिर।
1: जी बिल्कुल ज्ञानी जी, और यही बात बिल्कुल सही बोली कि वैज्ञानिक वे तो परीक्षण लागे ही कर दे, और तमाम तरह के जो इच्छे भी वैज्ञानिक तरीके है तो हम सब शोध लागे ही कर दे, पर एक चीज और है कि जो हमें जो हम आम नागरिक है या हम लोग भी जो है बोलो कि बजाय नाश ला कर प्रकृति का तो चामुक भी बजाय ध्यान पड़ता रखना, हम सब मिलकर ही पड़ दे चीजें बचावनी।
0: बिल्कुल ठीक बना आपके लिए कि हर व्यक्ति जो भी हिमालय क्षेत्रों में रहनु च वो एक तो बड़ी जिम्मेदारी छ ही च, लेकिन जो लोग हिमालय दर्शन का खातिर आना चन उनको भी एक जिम्मेदारी बन दे कि यखक जो पर्यावरण च वे तो सुरक्षित रखें। किले कि अगर लगातार प्रदूषण बढ़नु च, लगातार प्लास्टिक को उपयोग यखक बुग्यालों में ग्लेशियरों में हम कना छ
1: जी
0: तो वैसे क्या हों कि प्रकृति का कि न कि नाराज हों कि क्या कहना है भाई तुम यक
1: जी
0: एक तो साफ सुथरु चेणु हम तय और वैसे असर पड़ सीधा सीधा हमारा जो हिमनद छन।
1: बिल्कुल
0: आजकल आपन देख ही कि नेपाल की घटना का बाद अब ये पूरा हिमालय क्षेत्र में अध्ययन होना छन
1: जी
0: कि भाई कख कख झील बनया छन को खतरनाक हो सकते हैं, किला आखिर जल्दी से तापमान में इतना परिवर्तन होना चाहिए कि ग्लेशियर गल जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। काई की जवाब में भी नेपाल की जो घटना देखो तो इतने पूरे जो हमारे जो इच्छे भी दौड़ते आज लोग रहे सब या हैरान भी कि एवेस्ट टू का अलग हुई, और यही सबुक एक सोचने का विषय भी हम सबुक कि भाई हमारी कोई की ना कोई की गलती है जो ये चीजें लगी होंगी है, और नेपाल भी कोणी शो सो और ये भी हमारे जो सब मुझ ती लगी बाढ़ आउंदी
0: हाँ
1: सही भी, और उत्तराखंड मुझ भी कई प्रकार की बाढ़ और कई प्रकार के जो ग्लेशियर टूटो या झील टूटो से कोई की ना कोई की हमारी सब की गलतियां हैं।
0: चला साहब गलतियों का सुधारण आज
1: जी
0: मौका च और हिमालय दिवस पर हम सभी संकल्प लियो कि हम हिमालय की सुरक्षा का खातिर कुछ कदम तो उठावा। वो तो पूरे देश और ये जो मानव समाज है वही की सुरक्षा की गारंटी देनी है,
1: जी
0: लेकिन वे तय भी अब सुरक्षा की जरूरत पड़नी है
1: जी
0: तो वो काम हमन करण। आज कार्यक्रम को मुख्य आकर्षण च हमार साप्ताहिक कार्यक्रम न्यार द्वार जैत प्रस्तुत कराला दिग्विजय चौहान। तो उखमा खारी कुछ इथा उथा छुई छिन आप टक लगा के सुन ला हमार न्यार द्वार कार्यक्रम। एक अलावा खारी रंत रह बार छिन हमार छुई बद भी छिन गीत भी छिन। शुरुआत कर मकना आपन
1: शुरुआत हमें जौनसारी गीत से कर दे और तत्की आगे सुनो जया रेबार, और रेबार के बाद जौनसारी गीत और जब सिंह के स्वर मुझ
0: और यानी कुल मिला के इतर पे रह बार भी छन
1: जी।
0: तो लिया सोना साहब गीत और गीत का दगड़ी रह बार भी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: वाह जी वाह, इतनी सारी चीजें एक पॉलिसी में संभव नहीं है।
0: संभव है PLI के साथ। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अब लिस्टेड कंपनीज के एम्प्लॉयर्स और सभी प्रोफेशनल्स जैसे CA, डॉक्टर, इंजीनियर और डिप्लोमा डिग्री होल्डर भी ले सकेंगे PLI पॉलिसीज में 50 लाख तक के बीमे का फायदा और साथ में डाक विभाग का भरोसा भी। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग ऑन www.indiapost.gov.in।
2: चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: अजब सिंह का स्वरमा अभी आपन सुन यू जौन सारी गीत दगड़ मछा खूब रंत रहबार, रंत रहबार भी खूब छिनच काल
5: जी
4: है ना। और जख हम बात करना छो प्रकृति की, प्राकृति

0: प्राकृतिक आपदाओं की, वे की सुरक्षा की, तो वक्त हमन थोड़ा देर पहले ही अभी बात करें। और आज एक दिन और छ कि आज हम मनाना छुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती,
1: जी
0: जौन बोल छा निज भाषा उन्नति अहे निज भाषा को मूल।
1: जी
0: और ये एक सुंदर समय छ कि जब हम हिंदी पखवाड़ा भी मनाना छुआ।
1: जी बिल्कुल। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या कोई और कवि ने तो बजाई एक अच्छा संदेश भी दो, कोई सी कविता के माध्यम से अमुक बजाई आपने संदेश आके दे, बजाय अच्छी अच्छी चीजें राके दे, तो सही भी अमुक लोग जो अपने जीवन में चाहे उतारू ने।
0: बिल्कुल, तो आज हम एक दा फिर उनथे नमन कला कि उनका जो साहित्य सेवा छे वो हम ते आज भी बाट बताने छे, आज भी समाज ते एक नई दिशा देने छे। हम भी कार्यक्रम ते एक नई बाट पर हिटला और आप तक पहुंचाना छो हम साप्ताहिक कार्यक्रम न्यार द्वार प्रस्तुत करना छन दिग्विजय चौहान। यख वक की खबर कौन शहर को सार डांडी काठियों बटे गांव गुठियार न्यार द्वार न्यार द्वार भय बहनों की छुई बात लेकी इना उना की खबर सार लेकी न्यार द्वार न्यार द्वार।
2: सुनो वाड़ियों नमस्कार, आऊं दिग्विजय चौहान, स्वागत हो आप सब लोगों का न्यार द्वार के इलाके अंक मुझ। हमारी हमेशा कोशिश रहो कि कार्यक्रम ग्राम जगत मुझ आमे किस नव घर में जितने यहाँ में तुम लोगों से और भी जुड़ी शक में और आप लोग इतु रेडियो के माध्यम से आमू से शकला जुड़ी आमे आपने कार्यक्रम मुझ न्यार द्वार का अंक शुरू रखा करी जो कि हफ्तेंदा हर बुधारे आप लोग कार्यक्रम ग्राम जगत मुझ सुनी शक। न्यार द्वार मुझ आमे बातचीत करूँ आपने आस पास के लोगों से जानुतियों के बारे मुझ और आप लोगों को भी सुनाऊँ एला के अंक मुझ भी हमें बातचीत राखी करी और जानकारी राखी ली ऐसे लोगों से जिन का बचपन पूरा गांव दा कोटा अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी गांव दे करी हो सो गांव राको तीय देखी जेतु गांव दे डुकरी पुंडी खूब फसलाओ थे आदमियों ते गांव दे त्यार बार मनाओ थे हमारे कोठार नाजलियों ते भरिए लेकिन तेत के बावजूद भी त्यू पलायन पड़ा करना। सबसे पहले हमें बातचीत करी सौराज चौहान जी से तस्वीरी पूछो कि को कहते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई करियो और पढ़ाई लिखाई करी करी तू कई शहरों दाना तो आओ सुनो सो का बोलो।
3: मेरा नाम सौराज चौहान हो रहा ग्राम मटियावाद चौकरा से जौन सर बाव का रण वाड़ा हो। मैं जो अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हो से अपने गांव दी करी थी तथके बाद आऊँ 11वीं 12वीं करता हूँ हरिद्वार आना था और BA में DAV कॉलेज देवरी करो तुम। BA करने के बाद मैं IT करो तो हरिद्वार ही और तथके

0: चुनवाड़ियों जसो बोलो भी हो क्या मैं पहाड़ा को छोड़ी, लेकिन पहाड़ा मुंह ना छोड़ी। सो साचो ही बोलो, लोगों से बातचीत मुझे ही आप पता चलो कि खांदे को मांदे आई हैं, लेकिन आप लोग घर बार डुखरे डीबी, रीति रिवाज त्यार बार भाषा बोली सब को अच्छी लागो, मन सबको करो आपड़े घर जानो को, लेकिन सबकी मजबूरियाओ अच्छे जीवन के वास्ते सब शहरों आई हैं, कहीं कि पहाड़ों भी शायद तीची व्यवस्थाएँ हमें शौकी ना करी जी चिच्छाई थी। सुबह चिकित्सा बोलिया, शिक्षा बोलिया या रोजगार बोलिया, और ये अच्छी बात हो कि हमारे जो लोग हो सुबह कुकी रो या देश रो या विदेश रो या, लेकिन आपड़े मनोदो पहाड़ रखो इच्छा अच्छी चीज किच आना। ऐपे बात करूँ मुकेश चौहान जी से, जो कि एक पत्रकार हो, जानकार आदमी हो, पहाड़ों के बारे में मुझे लग रहा लिखता, सुबह जिन समस्याएँ हो या हमारे त्यार बार हो या हमेशा यो अच्छी चीज़ें लिखो हमारे पहाड़ों के बारे में। तो आओ सुनो यू का बोलो।
1: तुम सब सुनवाड़ी सबसे पहले मेरी डालो और मेरा नाम

0: तो यारी के खातर भी तो ईशुनियो सभ्याए हर माँ बाप ईसु सूचो जे हमारा बच्चा अच्छा इंसान तचा बोना और एक पढ़ी लिखी करी एक बड़ा सभ्य व्यक्ति ता चाहे बोना और अच्छी नौकरी अच्छे योता चाहे तेसके मिला ताकि हमारा भी माँ बापू का परिवार का सारा ता लाग दा। कारण का हो कि सभ्याए ऐसो बोलो जे पलायन नो पलायन रुकना और ये परेशानी एक हमारे गांव की या हमारे क्षेत्र की खत बैलाड़ी की या कुकिया की भी आतना ये पूरे जोनसार बावर की समस्या हो और पूरे उत्तराखंड राज्य की हो काई की पलायन ऐसा लागे होंदा हमारे पहाड़ों में इंटर के बाद ना तो पढ़ाया के खातर आछे नौकरी के खातर यू तैयारी करने की हुआ थी तो बेजो उन्दे सोहरों दे कुने विकास नगर आ कुने धीवरे आ और जे कोनी आछुड़े बड़े बड़े वो सो पुंडे दिल्ली बड़े बड़े आछे जगहों जहाँ तैयारी कर दे जैसे राजस्थान कोटा भी और सो इलाहाबाद भी जहाँ पर कुने कोचिंग आके तैयारियां तो ईशोयो पलायन जब भी ओं भी हो तो जब भी आओ सूचो धीरे आई कोरियो जब आ नौकरी जाओ लागी ऐसा ही ओ के और ओरु के सब के माँ बाप भी तो ऐसे इनले गांव दे हो क्षेत्र मुझ आस पास पड़ोस के हो तो ऐसे ही लोग भेजो तो पढ़ना लिखना भेजो तो लागो नौकरी और जा लागी ना साबित तो अपने द प्राइवेट अपने काम धंधे उजार धंधे ढूंढो तो पलायन कौसा रुकदार है जो भी काबुल माँ सभ्याए हमें उन्दे हमें धीर है और पुणे दिल्ली पुणे लखनऊ पुणे पुणे इलाहाबाद तो यह सबसे बड़ा कारण हो कि हमें पलायन को की रुकदार है जब सभ्या बेले तो गौरे कौन बोल दे रहे हमारे सहजे दादा नानी नाना इजी बाबा नहीं बोल दे युवा हो जे भावी पीढ़ी हो तब जे गौर रोली नू और गौरे हमें जामे नू
1: श्रोताओं आशा करूं कि हमें जो ये बातचीत आप लोगों को निर्द्वार के अंक के माध्यम से सुनाई है आप लोगों को अच्छी लगे ली और सुनी करी कौन के सब लाओ पो कि हमारो पहाड़ ईशो खत्म न दो या सो दूस व्यान दो पो कि वापस पहाड़ पे लोग रोले और हमारे जो डोखरे डीबी होते तो हमारी फसलें पची लाग ली फसली का रूप सको बदल जैसे कि आजकल आप भरी लोग लो करी कि आप ढोकरी पुंडे बूट ले लाई कुणिए औषधियों की खेती लागे करदा कुनिए मशरूम की खेती लागे करदा और सबसे बड़ी जरूरत यही बस पो कि जब पहाड़ बचानो तो हमारी जो सरकार हो तुम भी पहाड़ की तरफ कोनी ध्यान पड़दा देना कहीं की जादुरी रोजगार वाला पहाड़ू बा तादुरी लोग लागिर ध्यान दे और सरकार के साथ अमुक भी यह ध्यान पड़ा रखना कि हमें भी अपने पहाड़ों को बचावें और जो खासकर ऊंदे गई जो लसमपो नहीं है उसको भी अपने पहाड़ों की तरफ ध्यान दो कई किसे ही हमारी जोड़े हों और अपनी जोड़े इंसानों को अदना चाहें बिसरे घोरे जान दे लागी और अपनी बोली भाषा अपने लारकोटिक जरूर सीखो अपने रीति रिवाज के बारे में अपने त्यौहार बारू के बारे में बोलो तो भी वो पहाड़ बची रंद हुआ ना तो सो दूस दूराना जो जिस पहाड़ों के घर खंडो नटले बाजी और हमारे डोगरे खील नट दे बाजी हमारी बोली भाषा खत्म नट दे तो एला में स्वराज चौहान शिखर रावत और मुकेश चौहान जी से बातचीत करी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आकाशवाणी से जुड़े हो और जो आजकल के मौसम की बात करें तो आजकल कोलाई घाम हो कोलाई बारिश लगी आंधी कई की चौमासा आप लोग पता ही हो आने वाले दो चार दूस भी शुरू रोंद हो आप लोग को नहीं का अपना ध्यान रखा कहीं की जुकाम बुखार लगी आजकल फैल रोंद और जो मच्छर से होने वाली बीमारियाँ हो जैसे मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू आप लोग इससे भी अपना बचाव करिया इसके साथ एलाका निर्द्वार अंक समाप्त करने की मुख्य यानी दिग्विजय चौहान को आज्ञा दिया नमस्कार
2: यखवक की खबर कौन शहर

0: शिक्षा हो, बेहतर खाने पीनी हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, तो आजमल किला छोड़ना छा
1: जी
0: पहाड़, लेकिन सड़क बार न पहुंच लोग पहले बहर आगे ना,
1: सही बात।
0: है ना। तो आप पहुंचने चे अगर एक उल्टू पलायन जो ना बोलना रिवर्स पलायन अगर वो है जा तो बहुत ही सुंदर।
1: जी
0: और ये मैं एक खास बात जरूरी चे कि पुटका खातिर तो सभी खाना चाहिए,
1: सभी जी
0: लेकिन सेहत का खातिर खाना वो गुण बोल दो हम पोषण।
1: पोषण जी। और जो शेयर लागी हम बोल रहे कि आजकल जो राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह भी लागी चलता है ना, तो ये तो भी कि सबसे बड़ी चीज है कि जब भी हमें कोई अपना खाना पीना जो बाणो है सा अमुक जो है बजाय साफ सफाई से, और बिल्कुल जो है जो कोई की सब्जी लो से भी बिल्कुल है रिकी चाहे लोणी या कोई की लाओ से भी साफ सुथरी चाहे करोड़ की भाई तो साफ करी की, और जो इच्छे हम साफ सफाई रखवा तो इच्छे अपना जीवन हमें स्वस्थ भी रख देव।
0: बिल्कुल। और खास कह रही कि हम पहाड़ का लोग तो ये मन ना कि हाँ जो हमारे प्राकृतिक खेती बेटा आणु च
1: जी
0: वो में भरपूर पोषण च,
1: जी
0: किला कि अभी हमारा डोकरा पुंगड़ो माँ उर्वरक रसायन निपोड़ियों तो
1: बिल्कुल
0: यहाँ मतलब माटू माँ भी ताकत छे च,
1: ताकत है
0: है ना। तो जो यो हमारा माटू अनाज छ या जो हमारा प्राकृतिक और जैविक उत्पाद छ ये हमारे सेहत का खातिर एक पोषण को काम भल के कह सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये का अलावा भी हम तो देखण होलो कि दिन भर में हम क्या खाना छुआ क्या पीना छुआ वही हिसाब से भी हम तो अपन पोषण तय करण चाहिए,
1: जी
0: किला कि हम तो सब कुछ चैणु च विटामिन भी चैणा छन बल कार्बोहाइड्रेट भी चैणु च और क्या क्या और फाइबर वगैरह कुछ जान के क्या बोल देने
1: बिल्कुल
0: वो सब कुछ चैणु हम तो। लेकिन अगर आज गाल हम ककड़ खा लियो ना एक
1: जी
0: ओ पहाड़ पहाड़ लोग लो बटे तोड़ी के
1: जी
0: तो भाई साहब इन बोला कद का पैण चूहे में है और कतना पोषक तत्व तो छन।
1: जी
0: तो कुल मिला एक बात यह कि हम अपन खाण में पोषक तत्वों की बात भी शामिल करा इन्ना कि गर्जा गुर्जी जुई मिलनी हुई खाना।
1: जी बिल्कुल काई की जे स्वास्थ्य अच्छा होला
0: हाँ
1: तभी जो हम बाकी काम भी सब दे करी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आवा कार्यक्रम में कुछ और गीत गात सुन ला।
1: श्रोताओं एवं आप लोगों गढ़वाल की ओर नो तो आओ सुनो प्रीतम बर्तवान के स्वर मुझ एवं गढ़वाल गीत पर तत् की आगे रेबार।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
4: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
3: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े और शरीर को ढकने वाली ड्रेस पहने, इससे मच्छरों के काटने से बचने में मदद मिलती है।
4: सर, यानी शॉर्ट्स या छोटी बाजू के कपड़ों की जगह पूरी बाजू की ड्रेस पहननी चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
4: और घर में मच्छर ना पनपे इसके लिए
3: गमले, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा ना होने दें।
4: सर समझ गए, पूरी बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
3: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: रंतरेबारों का दगड़िया अपन प्रीतम भरतवाण का स्वर्मा यू गीत सुन। और अब हम आप तभी बतो लगे कखने जाना अपन या फणी रहन के लगे 6:50 तक ग्राम जगत कार्यक्रम अजी चलनु छ। लिया सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा। सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान, नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने पर दिया जोर। उत्तराखंड में इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज, ग्राम पंचायत से केंद्रीय स्तर तक प्रभावी निगरानी की व्यवस्था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत विकासखंड के सिलोर देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया और कोटद्वार में परंपरा से प्रगति की ओर थीम पर कुम्हारों और माटी कला कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं और विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। आज लोकभवन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए शिक्षा, खेल, कौशल विकास, रचनात्मक गतिविधि और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता, रोकथाम, उपचार और पुनर्वास सभी पहलुओं पर एक साथ काम करने की जरूरत बताई।
3: जो हमारी चुनौती है, समाज की चुनौती है, जो मानवता की चुनौती है ड्रग्स की, उसको वी टुक इट हेड ऑन। आज हमने बहुत सुंदर तरीके से इस विषय के ऊपर संवाद किया, उसमें तीन ग्रुप बनाए थे। एक तो हमारे वाइस चांसलर्स का पैनल था, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किस प्रकार हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे सिस्टम और पुलिस सिस्टम है, जो फार्मिस्ट है, मेडिकल है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका ग्रुप था। और तीसरा बच्चों ने खुद एक नाटक के रूप में बताया कि असली प्रॉब्लम क्या है। आज ऐसा लगा कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर हमारी सबसे बड़ी चुनौती ड्रग्स, नशा और नशा मुक्त कैसे हमारा समाज बने और हमारी युवा शक्ति, जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की तरफ ले जाना, वो किस प्रकार इसके अंदर में योगदान करे।
2: कार्यक्रम में नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए देहरादून घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। ये घोषणा पत्र प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों में आम लोगों की भागीदारी और ठोस कदम उठाने पर जोर देता है। 1 अप्रैल से देशभर में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय देहरादून की ओर से आज सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ प्राग मधुकर धकाते ने इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों में स्रोत पर कचरा पृथककरण, पुनर्चक्रण और संसाधनों के पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में करीब 1930 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है, जिसमें लगभग 1800 मीट्रिक टन का प्रसंस्करण किया जा रहा है। श्री धकाते ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ कचरे की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ऐसे में वैज्ञानिक और डेटा आधारित दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के साथ जनप्रतिनिधि और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
4: वेस्ट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें ड्राई वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट का कैटेगराइजेशन है। और पहली बार बल्क वेस्ट जनरेटर्स को डिफाइन किया गया है, तो उनको एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की

0: सेंट्रलाइज पोर्टल पे उनको पंजीकृत भी करना है और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है बल्क वेस्ट जनरेटर्स को। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी आ गए हैं वहां पे, और उनके डायरेक्शंस के क्रम में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के साथ साथ ग्राम प्रधान तक की जो व्यवस्था है इसमें दी गई है वहां पे, और पहली बार इसकी डिजिटल ट्रैकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल पेनल्टीज इसमें दी गई है। साथ में एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का एक मॉडल इसमें विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका वेस्ट से वेल्थ भी बनेगी और साथ में रोजगार का सृजन भी होगा।
1: टिहरी जिले की मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने आज कीर्तिनगर विकासखंड में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत संचालित उद्यमों का निरीक्षण किया। उन्होंने फूड कार्ट और संग्रहण केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का परीक्षण कर स्वच्छता और बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने उद्यमों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के माध्यम से आगे बढ़ने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मजबूत हो सके।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले में रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की ताड़ीखेत विकासखंड में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सिलोर देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों के 22 ग्राम राजस्व ग्रामों और 34 तोकों को पेयजल सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से क्षेत्र की लंबी समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान होगा और ग्रामीणों को घर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
3: बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है, जो कि सिलोर बेबी पंपिंग योजना के नाम से बहुत लंबे समय से उसकी मांग थी। माननीय विधायक जी के, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो धनावंटन के बाद वो योजना का शुभारंभ हुआ है और लगभग वो 11 ग्राम पंचायतों को और लगभग 20 से ज्यादा तोकों को पानी देने का काम करेगी, जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो पानी की बड़ी समस्या थी उसका समाधान हुआ है।
1: बागेश्वर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बाल विकास परियोजना की ओर से आज जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देते हुए स्वस्थ खान पान के प्रति जागरूक किया। वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक सृष्टि कानपाल ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना है।
4: पोषण मिशन की आज यहाँ पर रैली निकाली गई। सभी यहाँ पर सुपरवाइजर और अन्य विभागीय सभी कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में बागेश्वर में यहाँ पे हम लोग संतुलित आहार के बारे में नारे लगाते हुए और पोषण को किस तरह से आगे को बढ़ाए और मोमो चाउमीन और अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहते हुए घी और दही और अन्य अच्छे सुपोषण आहार को अपनाने के उद्देश्य से हमारा पूरा बागेश्वर नगर क्षेत्र में बाल विकास परियोजना कार्यालय से पूरे नगर क्षेत्र होते हुए अपनी रैली का शुरुआत की।
1: पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के जिला उद्योग केंद्र में कुम्हारों और माटी कला कारीगरों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए परंपरा से प्रगति की ओर थीम पर आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारीगरों को ऋण सुविधा, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और बाजार से जुड़ने की जानकारी दी गई। माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष अनुराधा ध्यानी वालिया ने कारीगरों से पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रेरित किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने कहा कि कारीगरों को विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाते हुए उनकी कला को बाजार से जोड़ना और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। चंपावत जिले में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। टनकपुर, बनबसा, चंपावत और लोहाघाट समेत सभी नगर निकायों में ये मेले 30 सितंबर तक आयोजित होंगे। नोडल अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि मेलों में पीएम स्वनिधि के पात्र लाभार्थी और उनके परिजनों को केंद्र सरकार की 8 अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण और ऋण वितरण में तेजी के साथ डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
5: पीएम स्वनिधि अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर है उनको कार्यशील पूंजी, उनके डिजिटल ट्रांजेक्शन की आदतों को बढ़ावा देने और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं को देने के लिए पूरे जनपद चंपावत अंतर्गत पांचों निकायों में लोक कल्याण मेले का आयोजन सितम्बर माह में किया जा रहा है और जितने भी हमारे स्थानीय निकाय हैं सभी में इन मेलों का आयोजन किए जाने के रोस्टर जारी कर दिए गए हैं और संपूर्ण माह में हम लोग कल्याण उत्सव को मनाते हुए ज्यादा स्ट्रीट प्लेयर्स को लाभ देने का प्रयास करेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान, नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने पर दिया जोर। उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज, ग्राम पंचायत से केंद्र स्तर तक प्रभावी निगरानी की व्यवस्था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत विकासखंड में सिलोर देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया और कोटद्वार में परंपरा से प्रगति की ओर थीम पर कुम्हारों और माटी कला कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, ग्राम जगत कार्यक्रम के दूजे पाली में जाऊँ आशीष चौहान आप सब लोगों का फिर स्वागत करूँ और स्वागत के साथ ही कार्यक्रम में एक और आगे से बढ़ाऊँ। श्रोताओं, आप लोगों का हमारा जो कार्यक्रम है सा कुछ लगा या आप लोग जरूर लिखिया कई की आप लोगों के सुझाव और आप लोग जो अमुक लिखी करी बह जाओ तो अमुक बेजाई अच्छो भी लागो और ऐसो भी चलो पता कि जो हमारा कार्यक्रम में सा आगा शाम में कुछ चलाई सको और तुमने का का सुधार हमें करी सको। तो हमारा जो मेल का पता है सा है चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com और जो हमारा इतके पोस्ट ऑफिस का जो हमारा पता है इतके का सा है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा ग्राम जगत अनुभाग केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और जो हमारा पिन है सा है 248001। श्रोताओं, आप लोगों के सुझाव का मैं इंतजार करूँ और हमें विचार भी करूँ पो कि जब भी हमारे श्रोता हमको किच लिखी करी भाई जो है तो हम ही तो तुम का बदलाव करो काई की जो कार्यक्रम में सा तभी अच्छा चलता जब हमें दुनिया तरफ जो है एक दूसरे की बात छोड़ना हो रहे तभी कार्यक्रम अच्छा भी चलो जब दुई तरफ आओ और आप लोग हमको सुझाव जरूर भेजिए कार्यक्रम में एक और आगे से बढ़ाऊँ और आप लोगों को नौ जौनसार की तरफ। तो आओ सुनो एक जौनसारी हारोल महेंद्र चौहान के स्वर में लेकिन तत् की आगे रेबार।
1: जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
2: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप सोना खरीदने से पहले।

श्रोताओं एबलो तो सुनिए आप लोग महेंद्र चौहान के स्वर मुज ए जौन सारी हारूल श्रोताओं हेला का जो ग्राम जगत कार्यक्रम है साहित्य कई समाप्त हो मुख्य विद इजाजत नमस्कार।

0: નમસ્કાર, આકાશવાણી દેહરાદૂન માટે ગઢવલીમાં પ્રાદેશિક સમાચારો કા દગડી મી આશના કંડિયાલ નેગી. સબસે પહેલે મુખ્ય સમાચાર. રાજ્યપાલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ ગુરમીત સિંઘન નશા કા વિરુદ્ધ અભિયાન થે સરકારી પ્રયાસો તક સીમિત ન રખીકર જન આંદોલન બનાણ પર જોર દે. દેહરાદૂનમાં ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબંધન પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કો આયોજન. નયા નિયમો કા અંતર્ગત ચાર ધારાઓમાં કચરા પૃથકીકરણ પર દીએ ગયે જોર. અલમોડા જિલ્લામાં જંગલી જાનવરો બટે ફસલો થે બચાણ ખૂણ સભી વિકાસખંડોમાં ચેન લિંક ફેન્સિંગ લગાઈ જાલી. ઓર બાગેશ્વર જિલ્લામાં આયુર્વેદિક ચિકિત્સા સેવાઓ કો દાયરા બઢી. પંચકર્મ યોગ ઓર ચાર સૂત્રજન આયુષ સેવાઓ થે સ્થાનીય સ્તર પર કરે જાણું છે મજબૂત. अब समाचार विस्तार से. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन नशा का खिलाफ अभियान थे सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखी कर जन आंदोलन बनाने पर जोर दे. उन बोली कि नशा केवल मनखी का स्वास्थ्य खुण ना बल्कि परिवार समाज और राष्ट्र की प्रगति खुण भी गंभीर चुनौती छू. वो आज देहरादून का लोकभवन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का तहत आयोजित एक प्रयास नशा मुक्त हो समाज कार्यक्रम थे संबोधित करना छा.
1: एक तो होता है कि नशा होने के बाद में किस प्रकार निकालना है उस चंगुल से, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए. तो आज बहुत ही इस विषय के ऊपर में समझ आया कि हमको अपने बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है. पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा. इट हैज गॉट टू बी होल ऑफ द नेशन अप्रोच, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ द मानवता अप्रोच. कोई सिंगल जो स्टेक होल्डर है वो ठीक हो जाए उससे कार्य नहीं होगा. और एक बात पक्की है, आज संकल्प किया, एक रूथलेसनेस, दृढ़ता बहुत जरूरी है हैंडलिंग द माफिया, क्राइम, पेडलर्स और जो इस धंधे के ऊपर में, हाउ टू डिस्ट्रॉय द एंटायर नेटवर्क ऑफ ड्रग्स विच इज देयर.
0: कार्यक्रम को

0: भूमिका थे जरूरी बताए। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन थे लेकर आज पत्र सूचना कार्यालय की तरफा बटे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करेंगे। मीडिया सचिवालय सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, कचरा पृथककरण, पुराना कचरा को निस्तारण और स्थानीय निकायों की भूमिका पर जानकारी दिए गए। प्रस्तुत एक रिपोर्ट।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बोली कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बाबत प्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी छ। उन बताए कि नए नियमों का तहत कचरा थे गिल्लू सूखा सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा की चार धाराओं में अलग अलग करण पर जोर दिए गए। कचरा का संग्रहण परिवहन और निस्तारण की ऑनलाइन निगरानी का भी प्रावधान छ। उन बताए कि राज्य का 108 शहरी स्थानीय निकायों की 1314 वार्डो में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था छ। वखी अपर निदेशक शहरी विकास प्रवीण कुमार अनु बोली कि चार धाम व अन्य पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ तीर्थ यात्रा और पर्यटन गतिविधियों थे देखे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विशेष योजना पर जोर दिए जानो छ। उन बोले कि साफ हवा और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बाबत सरकार स्थानीय निकायों जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी छ। आकाशवाणी देहरादून समाचार कक्ष बटी मीना उनियाल।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटन अल्मोड़ा में रानीखेत विधानसभा क्षेत्र का ताड़ीखेत विकासखंड में सिलोरी देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना की शुरुआत कर क्षेत्रवासियों थे समर्पित कैरी। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन योजना बटे 7 ग्राम पंचायतों का 22 राजस्व ग्रामों और 34 तोकों थे पेयजल सुविधा मिलाली। ये अवसर पर श्री टमटन बोली कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना प्रतिबद्ध छ। उन बोली कि इन योजना से क्षेत्र में लंबा बगत से चलन आण वाली पेयजल समस्याओं को समाधान होलू।
2: लगभग वो 11 ग्राम पंचायतों को और लगभग 20 से ज्यादा तोकों को पानी देने का काम करेगी, जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो पानी की बड़ी समस्या थी उसका समाधान हुआ है।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटिन प्रसारित होनु छे। ताजा समाचारों को आप हमारा सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकदिन। दगड़ ही यो समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छन।
0: अल्मोड़ा जिला में जंगली जानवरों बटे फसलों थे बचाण खुण सभी विकास खंडों में चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाली। यहाँ खुणे अलग अलग मदों बटी कुल 3,84,00,000 रुपए की धनराशि मिली छ। यहाँ से करीब 200 हेक्टेयर खेतों थे जंगली जानवरों बटे होने वाला नुकसान से बचाण को लक्ष्य छ। मुख्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि बसक्याल खत्म होने का बाद घेरबाड़ लगन को काम शुरू करे जालू। यहाँ खुणे जिला का सभी विकास खंडों बटे जनप्रतिनिधियों किसानों और ग्राम प्रधानों का प्रस्ताव मिल चुके छिन। विभागन यहाँ की जाँच भी पूरी कर ली
4: कि जो जंगली जानवर से जो नुकसान हो रहा है जनपद अल्मोड़ा में उसके लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाएगी और हमको केंद्र सरकार से भी कुछ धनराशि मिली हुई है। लगभग 185,00,000 का प्रथम आवंटन हमको मिला है और यहाँ पर जनपद से भी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जिला योजना में भी हमको 139,00,000 का जो धन आवंटन हुआ है चेन लिंक फेंसिंग के लिए जो घेरबाड़ है। इसके अलावा हम जो प्रस्ताव आए हैं पूरे जनपद से उसका भी परीक्षण कर लिया गया है, वो फाइनल की तरफ है वो, और हम इसको PPP मोड पर कर रहे हैं, यानी कि जो विभाग है उसमें एंगल और जाली विभाग देगा। तो विभाग और सरकार पूरा प्रयासरत है कि इसमें हम जंगली जानवरों से जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाए खेती को।
0: बागेश्वर जिला में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं को दायरा बढ़ुणो छ। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की तरफा बटे पंचकर्म योग और चार सूत्र जना आयुष सेवाओं थे स्थानीय स्तर पर मजबूत करे जानो छ। उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मजियाखेत और जिला चिकित्सालय का आयुष विंग में अब तक 4,791 पंचकर्म थेरेपी दिए जा चुके छिन। यक मरीजों की जरूरत का अनुसार विभिन्न पंचकर्म प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध छ। लाभार्थियों पंचकर्म की सुविधा मिलन पर संतोष जताई और उपचार बटे लाभ मिलन की बात बोली।
5: मुझे गैस की काफी दिक्कत थी, करीब एक महीने से मैं यहाँ की दवाई ले रही हूँ, मुझे काफी अंतर लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, पेट हल्का महसूस हो रहा है, भूख भी लग रही है। जब से मैंने आयुर्वेदिक यहाँ चिकित्सालय से डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी तब से मुझे काफी अंतर लग रहा है, पेट हल्का सा भी हो रहा है।
0: चिकित्सक डॉक्टर पंकज मिश्र ने बताया कि मरीजों की स्थिति के अनुसार पंचकर्म प्रक्रियाएं निर्धारित करी जानी चाहिए।

0: हमारे यहाँ पंचकर्म, छाड़ सूत्र, मर्म थेरेपी, योग कार्यक्रम आदि समय समय पर शिविर का आयोजन के साथ साथ हॉस्पिटल में किया जा रहा है, तो जिससे लोगों में काफी विश्वास बढ़ा है और लोग आ भी रहे हैं, पेशेंट काफी बड़े हैं। हमारे यहाँ जो है एनोरेक्टल के लिए छाड़ सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तो कम से कम 10-12 इसमें छाड़ सूत्र हो गए हैं, तो लोगों में काफी विश्वास बढ़ा है, तो लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लगातार हर दिन पंचकर्म की थेरेपियां चल रही हैं, जिससे क्या है कि काफी आराम मिलता है बहुत सारी बीमारियों में, मस्कुलोस्केलेटल जो डिजीज है उनको काफी आराम है, तो पेशेंट संख्या बढ़ भी रही है और उनको विश्वास भी हो रहा है कि हमें आरवी से काफी फायदा होगा।
1: देश तय वर्ष 2030 तक टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ बटे अभियान चलाए जाणु छे। यहाँ का अंतर्गत रुड़की शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों की टीवी जांच कराई जानी छे। अब तक 73,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करे जा चुकी छे। रुड़की सिविल अस्पताल में टीबी का गंभीर मरीजों का उपचार गुण 4 बेड का विशेष आईसीयू वार्ड तैयार करे जाला। अस्पताल प्रबंधन का अनुसार वार्ड में आईसीयू और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाली, यहां से गंभीर मरीजों थे बेहतर उपचार मिल सकल।
2: भारत सरकार के द्वारा टीबी मरीजों के लिए अलग से 4 बेड का टीबी के लिए आईसीयू बनाया जाना है, उसके लिए कल टीम आई थी और उसके बनने से मरीजों को काफी फायदा होगा। टीबी के जो मरीज रूटीन वाले हैं वो तो दवाइयां घर पे ही लेते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल हैं, जिनको सांस में ज्यादा दिक्कत है या कॉम्प्लिकेटेड है, उनको भर्ती किया जाएगा आईसीयू में।
1: अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नशा का विरुद्ध अभियान थे सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखी कर जन आंदोलन बनाने पर जोर दे। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजन। नया नियमों का अंतर्गत 4 धाराओं में कचरा पृथकीकरण पर दिए गए जोर। अल्मोड़ा जिला में जंगली जानवरों बटे फसलों थे बचाण खुण सभी विकास खंडों में चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाली। और बागेश्वर जिला में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं को दायरा बढ़ी। पंचकर्म, योग और छाड़ सूत्र जन आयुष सेवाओं थे स्थानीय स्तर पर करे जाणु छु मजबूत। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वली प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मैं कंचन रावत आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि जगत में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज है 9 सितंबर और आज हम मनाते हैं हिमालय दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हिमालय के संरक्षण और उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। किसान भाइयों बहनों, हिमालय हमारे लिए केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि ये हमारे जल, जंगल और जीवन का आधार है। जरा सोचिए, अगर ये हिमालय ना होते तो हमारे खेतों में फसल के लिए पानी कहाँ से आता। ये जो नदियाँ, गाढ़ गदेरे, झरने, जल स्रोत हम देखते हैं, ये सभी हिमालय की ही देन है। उत्तराखंड में तो किसानों के लिए इनका महत्व और भी खास हो जाता है। यहाँ की खेती, पशुपालन और बागवानी सीधे पहाड़ों, जंगलों और पानी से जुड़ी है। हिमालय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना कितना जरूरी है। हमारे किसान साथी छोटे छोटे प्रयास करके हिमालय के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे खेतों की मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाएं, वर्षा जल को बचाएं, सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकें और पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के संरक्षण का ध्यान रखें। साथियों, याद रखिए, हिमालय सुरक्षित रहेगा तो हमारी नदियाँ बहती रहेंगी, नदियाँ बहती रहेंगी तो खेतों में हरियाली रहेगी, और खेतों में हरियाली रहेगी तो किसान

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। बात करें अगर खेती की तो हमारे किसान साथी हमेशा यही सोचते हैं कि खेतों में मेहनत कम करनी पड़े और फसल अच्छी हो जिसका उन्हें दाम भी अच्छा मिले। साथियों, गोभी वर्गीय सब्जियों की मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। अगर आप भी गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंटवार्ता जिसका विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र केस और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र कैम और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की, बहुतायत में हमारे किसान साथी सब्जियों का उत्पादन करते हैं और उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गोभी का उत्पादन हमारे किसान साथियों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है और अच्छे दाम भी इसके हमारे किसान साथियों को मिलते हैं। तो कैसे हमारे किसान साथी फूल गोभी की खेती करें ताकि अच्छा उत्पादन उनको मिले? डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
1: डॉक्टर साहब, फूल गोभी की अगर हम खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, मिट्टी किस तरह की हो।
2: जी जी जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है। किसान भाइयों, फूल गोभी जो है लोकप्रिय सब्जी है
1: जी,
2: और इसको जो लगभग पूरे साल जो है उगाया जा सकता है अलग अलग क्षेत्र में
1: जी।
2: तो इसमें इसके लिए जो है ठंडी जलवायु नम जलवायु की आवश्यकता होती है
1: जी।
2: तो और मिट्टी जो है इसमें बलुई दोमट से लेके चिकनी दोमट तक की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है।
1: अच्छा,
2: जिसका पीएच मान जो है 6-7 हो और जो है भूमि जो है अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए।
1: जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी आसानी से हमारे किसान साथी इसको लगा सकते हैं।
2: गर्मियों के सीजन में मार्च से लेके जो है जो अगस्त तक जो है इसकी खेती जो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है।
1: अच्छा, और इसके बाद जैसे अभी ये समय चल रहा है तो इस समय हम मैदानी क्षेत्रों में
2: इसको जो जैसे मैंने बताया पूरे वर्ष इसकी खेती की जा सकती है। तो जो अगेती प्रजाति है उनको जो है मई से शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा,
2: और जो है सितम्बर तक इसकी जो पोत डाल सकते हैं। जी जी,
1: और पौध हमने डाल दी है, अगर हम रोपाई की बात करें तो किस समय तक हमें इसकी रोपाई कर देनी चाहिए?
2: रोपाई जो है जून से लेकर जो है और नवंबर के फर्स्ट वीक तक, अगेती की जो है मतलब जून जुलाई में, और मध्यम जो है अगस्त सितंबर में, और लेट जो है मतलब अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं
1: जी। अब डॉक्टर साहब, थोड़ा सा प्रजातियों को जान लेते हैं कि किस तरह की प्रजातियां अच्छा उत्पादन दे रही हैं, किन प्रजातियों को हमारे किसान साथी चुने।
2: हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है क्योंकि प्रजातियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जलवायु और मिट्टी के अनुसार अगर प्रजाति का चयन नहीं करेंगे तो उससे हमारा जो उत्पादन जो प्रभावित होगा। फूल गोभी की प्रजाति 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं, जो अगेती हैं मई से शुरू हो जाती हैं, जैसे अर्ली कुवारी है, पूसा दीपाली है, इम्प्रूव जापानीज है, और काशी कुवारी है। ये अनुसंधान संस्थान है काशी में, वहां से निकाली गई है।
1: अच्छा,
2: और पूसा हिमज्योति, ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी आसानी से अच्छा उत्पादन देती है।
1: पूसा हिमज्योति
2: हाँ, इसका फूल जो बहुत अच्छा सफेद बर्फ की तरह होता है और उत्पादन भी इसका अच्छा है। पूसा सुब्रा है, पूसा अर्ली सिंथेटिक है, ये भी अगेती प्रजाति है। पूसा शरद, पूसा सुक्ति, इसका पूसा सुक्ति का जो उत्पादन बहुत अच्छा 400 कुंतल प्रति हेक्टर तक होता है।
1: अच्छा
2: जी, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 25 है, पंच सुब्रा, ये पन्नागर विश्वविद्यालय से निकाली गई है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, हिसार 1, स्नोबॉल 16, ये लेट वैरायटी है और इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। इसके कार्ड जो फूल होते हैं वो हार्ड होते हैं
1: जी,
2: तो ये

0: क्योंकि प्रजातियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जलवायु और मिट्टी के अनुसार अगर प्रजाति का चयन नहीं करेंगे
1: जी
0: तो उससे हमारा जो उत्पादन जो प्रभावित होगा। फूलगोभी की प्रजाति 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं, जो अगेती हैं मई से शुरू हो जाती हैं,
1: जी
0: जैसे अर्ली कुवारी है, पूसा दीपाली है, इम्प्रूव जापानीज है और काशी कुवारी है। ये
1: जी
0: अनुसंधान संस्थान है काशी में, वहाँ
1: जी
0: से निकाली गई है।
1: अच्छा
0: और पूसा हिमज्योति, ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी आसानी से अच्छा उत्पादन
1: पूसा
0: देती है,
1: हिमज्योति
0: पूसा हिमज्योति।
1: जी
0: हाँ, इसका फूल जो बहुत अच्छा सफ़ेद बर्फ की तरह होता है और उत्पादन भी इसका अच्छा है। पूसा शुभ्रा है, पूसा अर्ली सिंथेटिक है, ये भी अगेती हुई प्रजाति है। पूसा शरद, पूसा सूक्ति, इसका पूसा सूक्ति का जो उत्पादन बहुत अच्छा 400 कुंतल प्रति हेक्टर तक होता है
1: अच्छा
0: जी। पूसा स्नोबॉल एक है, पूसा स्नोबॉल 25 है, पंच शुभ्रा, ये पन्नागर विश्वविद्यालय से निकाली गई है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, हिसार 1, स्नोबॉल 16, ये लेट वैरायटी है और इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। इसके कर्ड जो जो फूल होते हैं वो हार्ड होते हैं,
1: जी
0: तो ये 1 लीटर पानी में घोल के जो 2 घंटे उसमें भिगो के उसको सुखा के जो हम कर सकते हैं। और ज़्यादा ही अगर काला फंगस लगा हुआ है तो हम जो है वेबस्टीन की 2-3 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके जो है हम जो है बुआई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कई बार किसान कहते हैं ना कि फूलगोभी में बहुत ज्यादा कीट का प्रकोप देखा जा रहा है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उस
0: हाँ
1: स्थिति में क्या हमारे किसान साथियों को करना
0: हाँ
1: चाहिए?
0: इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे रस चूसने वाले और सुंडी लगती है इसमें, कीट मतलब जो पत्तियों को खाती है,
1: जी
0: चमकीली टाइप की एक सुंडी और होती है जो उसको जो खाती है। हाँ, तो रस चूसने वाले और पत्ती काटने वाले कई कीट इसमें लगते हैं। मुख्यतः तो जो इसमें रस चूसने वालों में है जो महू या जिसको चैपा भी कहते हैं, तो ये रस चूस लेता है पत्तियों से और पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, उसके बाद गिर जाती हैं और जो है मुड़ भी जाती हैं
1: जी जी
0: सिकुड़ जहाँ। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें जो है इमिडा क्लोरोपिड
1: जी
0: 17.8 SS की जो को 1 मिलीलीटर को जो प्रति लीटर पानी में घोल कर जो है हम जो है छिड़काव जो है साफ मौसम में और शाम के समय करेंगे तो बहुत अच्छा जो है इसका प्रभाव पड़ेगा
1: जी
0: फसल पे। हाँ,
1: जी डॉक्टर साहब, क्या नर्सरी में भी कुछ इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं?
0: नर्सरी में भी आद्र गलन रोग लगता है, बीमारी लगती है, तो उसके लिए हम पहले से ही जो है ट्राइकोडर्मा से जो है 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उपचारित कर लेंगे तो तब ये बीमारी नहीं आएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कि अगर अच्छा उत्पादन हमें लेना है तो किस तरह की खाद और उर्वरक हमें देना होगा?
0: हाँ, एक्चुअल में फूल गोभी जो फसल जो है तत्वों के प्रति बड़ी संवेदनशील है,
1: जी
0: अगर इसमें किसी तत्व की कमी रहेगी तो उसमें कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी से जो बटनिंग फूल नहीं बन पाता और जो है छोटे छोटे बटन टाइप के जो है फूल जो बट जाता है।
1: जी जी जी
0: और जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कमी से भी जो है उसमें विपटेल मतलब वो खोखला हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बोरोन की डेफिशिएंसी से हो जाता है।
1: अच्छा
0: तो इसलिए जब ये पौधे हमें जो NPK तो देना ही है, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन, 160 किलोग्राम जो फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टेयर जो हमें देना चाहिए। और इसको देने का तरीका ये है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय जो हमें खेत में मिला देनी चाहिए, और
1: अच्छा
0: शेष मात्रा जो है हमें 30 से 40 दिन के उस पर जो है ये हम नाइट्रोजन मतलब यूरिया या जिस नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा उस समय दे देनी चाहिए। हम यूरिया से जिससे भी हम पूर्ति कर रहे हैं तो
1: जी
0: छिड़काव विधि करके जो है हम इसका जो है दे सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, पौध की अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी या पौध से पौध की दूरी, क्योंकि अगर अच्छा फूल हमें लेना है तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा।
0: हाँ, ये एक्चुअल में अच्छा उत्पादन देने के लिए पौधों की आपसी दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का जो है जो वैज्ञानिकों ने संस्तुति किया उसके

0: अगर गर्मी में हम फूल गोभी का उत्पादन कर रहे हैं और बरसात नहीं हो रही, तो हम 7 से 8 दिन पे जो है हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ज़्यादा
1: जी, और
0: पानी नहीं।
1: जैसे अभी हम
0: जैसे
1: सितंबर
0: आप
1: अक्टूबर नवंबर
0: सितंबर
1: में हम
0: सर्दियों
1: लगाते
0: में
1: हैं।
0: जो है
1: जी
0: हमें जो है 12 से 15 दिन के अंतराल पर जो हमें सिंचाई करनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जी
1: अंत में मुख्य बातें अगर कुछ आप हमारे किसान साथियों तक पहुंचाना चाहें, किन बातों का खास तौर पर हमारे किसान साथियों को ध्यान
0: जी
1: रखना
0: जी
1: है?
0: जी भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। फूलगोभी की फसल की अगर हम वैज्ञानिक खेती करें तो उसमें कई बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें जलवायु कैसी है और मिट्टी तो हमारी और किस्में, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जलवायु मिट्टी और किस्में जो जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं उसके उपयुक्त होनी चाहिए
1: जी
0: जी। ये और जो है फसल चक्र का जरूर अपनाएं, क्योंकि एक खेत में लगातार अगर हम एक ही मतलब फूल गोभी को उगा रहे हैं तो उसमें बीमारी और कीट आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है।
1: जी
0: और खाद उर्वरक जो आप दे रहे हैं उसमें जो है मृदा परीक्षण करा के अगर हम खाद उर्वरक देंगे जो संस्कृति के आधार पर देते हैं, उसमें हम ज़्यादा कम अगर हमारा परीक्षण हो जाएगा तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो उससे हमारा जो है खाद बच सकता है और धन की बचत हो सकती है।
1: जी तो डॉक्टर जगदीश चंद्र कैम साहब, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में और फूल गोभी के अच्छे उत्पादन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जगदीश चंद्र और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। इस भेंटवार्ता में बताई गई बातों को यदि आप ध्यान में रखकर खेती करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो इस भेंटवार्ता के बाद अभी वक्त हुआ है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये रोहिल खंडी लोकगीत।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत और किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक विशेष सूचना है कि क्या आप अपने पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल, खान पान या किसी बीमारी से संबंधित समस्या से परेशान हैं, या आपके मन में पशुपालन को लेकर कोई सवाल है, तो आपके सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ। आप भी हमारे विशेष फोन इन कार्यक्रम में सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और अपने पशुओं से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, दिनांक शुक्रवार 11 सितंबर, समय दिन में 1:30 से 2 बजे तक। अपने सवालों के साथ हमें कॉल करें इस नंबर पर 7088001382। हमारा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7088001382। तो अपने पशुओं से जुड़े सवाल तैयार रखिए और शुक्रवार 11 सितंबर को दिन में 1:30 से 2 बजे तक हमारे साथ जुड़िए। और इस सूचना के बाद अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथियों, आप कृषि से संबंधित किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं या अपनी पसंद का कोई लोकगीत रागिनी सुनना चाहते हैं, तो ये सब आप अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001, या jagatkrishi@gmail.com पर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। साथियों, हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। समय हो गया है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून वटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली सुनो मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल नशाक विरुद्ध अभियान के सरकारी कोशिशों तक सीमित निरखवेर जन आंदोलन बनून पर जोर दे। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन। नई नियमों के तहत चार धाराओं में कचरा अलग करण पर दे गई जोर। अलमर जिला में जंगली जानवरों फसलों के बचुणक लीजिए, सभी विकास खंडों में चैन लिंक फेंसिंग लगाई जल। और बागेश्वर जिला में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ा, पंचकर्म योग और छारजस आयुष सेवाओं के स्थानीय स्तर पर करी जाने मजबूत। अब समाचार विस्तारल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल नशा खिलाफ अभियान के सरकारी कोशिशों तक सीमित निरखवेर जन आंदोलन बनोण पर जोर दे। उन्होंने कहा कि नशा केवल मनखी स्वास्थ्य तक लीजी ना, बल्कि परिवार समाज और राष्ट्रक प्रगति के लीजी ले गंभीर चुनौती छू। ऊँ आज देहरादूनक लोकभवन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियानक तहत आयोजित एक प्रयास नशा मुक्त हो समाज कार्यक्रम के संबोधित करना छी।
2: एक तो होता है कि नशा होने के बाद में किस प्रकार निकालना है उस चंगुल से, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो आज बहुत ही इस विषय के ऊपर में समझ आया कि हमको अपने बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है। पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। इट हैज गॉट टू बी होल ऑफ द नेशन अप्रोच, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ द मानवता अप्रोच। कोई सिंगल जो स्टेक होल्डर है वो ठीक हो जाए, उससे कार्य नहीं होगा। और एक बात पक्की है, आज संकल्प किया, एक रूथलेसनेस, दृढ़ता बहुत जरूरी है हैंडलिंग द माफिया, क्राइम, पेडलर्स और जो इस धंधे के ऊपर में, हाउ टू डिस्ट्रॉय द एंटायर नेटवर्क ऑफ ड्रग्स विच इज देयर।
1: कार्यक्रमक मकसद नशाक बुर असर और नुकसानक बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करण रोल। यह दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड खातिर देहरादून घोषणा पत्र जारी करी गई। इमें युवाओं के नशा से दूर रखण, नशा मुक्त परिसर विकसित करण, परिवारक भूमिका मजबूत करण, नशाक आदि लोगों के उपचार और पुनर्वास तथा जनताक भागीदारी बढ़ाक लीजिए 10 प्रमुख संकल्प शामिल। कार्यक्रम में शिक्षाविदों और विशेषज्ञों विद्यार्थियों के काउंसलिंग, जागरूकता और नशा विरोधी वातावरण के मजबूतकरण पर जोर दे। विशेषज्ञों नशा मुक्त समाजक लीजी परिवार समाज शिक्षण संस्थानों प्रशासन और युवाओं की साझा भूमिका के जरूरी बताई। देहरादून में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आज पत्र सूचना कार्यालय तरफा बटी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करी गई। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, कचरा पृथककरण, पुराण कचरा निस्तारण और स्थानीय निकायों की भूमिका पर जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकातेल को कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधनक लीजिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।

0: प्रामाणिक सुविधा मिलेली। यह मौक में श्री टमटाल को कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार रख लीजिए प्रतिबद्ध छिन्न। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्रक लंब भगतवती चली आने वाली पानी की समस्या का समाधान हल।
1: लगभग वो 11 ग्राम पंचायतों को और लगभग 20 से ज्यादा तोकों को पानी देने का काम करेगी, जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो पानी की बड़ी समस्या थी उसका समाधान हुआ है।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपु लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: अलमर जिले में जंगली जानवरों है फसलों के बचुणक वास्ता सभी विकास खंडों में चैन लिंक फेंसिंग लगाई जल। यह लीजिए अलग अलग मदों बटी कुल 3,84,00,000 रुपए की धनराशि मिली छू। यह करीब 200 हेक्टेयर खेतों में जंगली जानवरों होनी वाल नुकसान बचुणक लक्ष्य छू। मुख्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्यल बता कि बरसात खत्म होने के बाद घेरबाड़ लगुण काम शुरू करने की तैयारी छू। यह लीजिए जिला सभी विकास खंडों बटी जनप्रतिनिधियों किसानों और ग्राम प्रधानों को प्रस्ताव मिली छिन। विभागल यह एक जांच ले पूरी करी हल
3: कि जो जंगली जानवर से जो नुकसान हो रहा है जनपद अल्मोड़ा में उसके लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाएगी और हमको केंद्र सरकार से भी कुछ धनराशि मिली हुई है। लगभग 185,00,000 का प्रथम आवंटन हमको मिला है और यहाँ पर जनपद से भी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जिला योजना में भी हमको 139,00,000 का जो धन आवंटन हुआ है चेन लिंक फेंसिंग के लिए जो घेरबाड़ है। इसके अलावा हम जो प्रस्ताव आए हैं पूरे जनपद से उसका भी परीक्षण कर लिया गया है, वो फाइनल की तरफ है वो, और हम इसको PPP मोड पे कर रहे हैं। यानी कि जो विभाग है उसमें एंगल और जाली विभाग देगा, तो विभाग और सरकार पूरा प्रयासरत है कि इसमें हम जंगली जानवरों से जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाए खेती को।
0: बागशेर जिले में आयुर्वेदिक इलाजक सेवाक दायरा बढ़न लग रहा है। जिला आयुर्वेद और यूनानी विभागक तरफा बटी पंचकर्म योग और 4 सूत्र जस आयुष सेवाओं के स्थानीय स्तर पर मजबूत करी जाने। उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मजियाखेत और जिला अस्पताल में आयुष विंग में अब तक 4,791 पंचकर्म थेरेपी दी गई छू। यहाँ मरीजों की जरूरत अनुसार अलग अलग पंचकर्म प्रक्रिया सुविधा मौजूद छिन। लाभ पाण वालों पंचकर्म सुविधा मिलन पर संतोष जता और इलाज से फायद मिलनक बात करे।
4: मुझे गैस की काफी दिक्कत थी, करीब एक महीने से मैं यहाँ की दवाई ले रही हूँ। मुझे काफी अंतर लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, पेट हल्का महसूस हो रहा है, भूख भी लग रही है। जब से मैंने आयुर्वेदिक यहाँ चिकित्सालय से डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी तब से मुझे काफी अंतर लग रहा है, पेट हल्का सा भी हो रहा है।
0: चिकित्सक डॉक्टर पंकज मिश्राल बता कि मरीजक हालत और हिसाब से पंचकर्म परिक्रमाएं तय करी जानी छिन।
5: हमारे यहाँ पंचकर्म, छाल सूत्र, मर्म थेरेपी, योग कार्यक्रम आदि समय समय पर शिविर का आयोजन के साथ साथ हॉस्पिटल में किया जा रहा है, तो जिससे लोगों में काफी विश्वास बढ़ा है और लोग आ भी रहे हैं, पेशेंट काफी बड़े हैं। हमारे यहाँ जो है एनोरेक्टल के लिए छाल सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तो कम से कम 10-12 इसमें छाल सूत्र हो गए हैं, तो लोगों में काफी विश्वास बढ़ा है, तो लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लगातार हर दिन पंचकर्म की थेरेपियाँ चल रही हैं, जिससे क्या है कि काफी आराम मिलता है बहुत सारी बीमारियों में, मस्कुलोस्केलेटल जो डिजीज है उनको काफी आराम है, तो पेशेंट संख्या बढ़ भी रही है और उनको विश्वास भी हो रहा है कि हमें आयुर्वेद से काफी फायदा होगा।
0: देश के

0: प्रबंधन पर जोर दे। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। नई नियमों के तहत चार धाराओं में कचरा अलगकरण पर जोर दे। विकास अलवर जिला में जंगली जानवरों है फसलों के बचुड़ों के वास्ता सभी विकास खंडों में चेन लिंक फेंसिंग लगाई जल और बक्सर जिला में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ो। पंचकर्म योग और चार सूत्र जस आयुष सेवाओं के स्थानीय स्तर पर करी जाने मजबूत। यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम के स्वर में इस गीत को।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम के स्वर में इस गीत को।

0: पहुंचा कैसे जाए?
1: यदि आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन नैनीताल के लिए प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 34 किलोमीटर बताई जाती है। स्टेशन से टैक्सी और बस के माध्यम से नैनीताल पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए पंतनगर हवाई अड्डा प्रमुख निकटतम हवाई अड्डों में शामिल है। हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा नैनीताल पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से भी नैनीताल उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों में बस, टैक्सी अथवा निजी वाहन द्वारा नैनीताल पहुंचा जा सकता है। नैनीताल पहुंचने के बाद नैना देवी मंदिर शहर के प्रमुख क्षेत्र में होने के कारण यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। स्थानीय क्षेत्र से पैदल या उपलब्ध स्थानीय परिवहन के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा पर निकलते समय पर्वतीय मार्गों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय रखना चाहिए। बरसात और सर्दियों के मौसम में मौसम तथा सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर यात्रा करना अधिक सुविधाजनक रहता है। तो श्रोताओं, यदि कभी आपका मन पहाड़ों की ओर जाने का करे तो आप प्रकृति की शांति के बीच आस्था का

0: उपलब्ध हैं, जिसमें आप कम मूल्य के साथ रुक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। श्रोता, उत्तराखंड की पहाड़ियों में यात्रा करते समय रास्ते में आने वाले मंदिर, देवदार के जंगल, सीढ़ीनुमा खेत, छोटे छोटे गांव और दूर तक दिखाई देती हिमालय की चोटियां मिलकर एक अलग ही अनुभव देती हैं। और जब इस यात्रा में गोलू देवता के धाम का दर्शन जुड़ जाए तो यह यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूप में यादगार बन जाती है। तो जब भी आप उत्तराखंड की यात्रा की योजना बनाएं, नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ माँ नैना देवी के दर्शन और कुमाऊं की लोक आस्था को समझने के लिए गोलू देवता के धाम की यात्रा अवश्य करें। यही है उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, जहाँ हर पहाड़ की अपनी कहानी है, हर मंदिर की अपनी मान्यता है और हर लोक देवता के साथ लोगों की भावनाओं का गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, राज्य दर्शन का ये अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आज के राज्य दर्शन में सिर्फ इतना ही। अगले बुधवार फिर होगी आपसे मुलाकात राज्य दर्शन के किसी नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं भजन अनूप घोषाल के स्वर में। उससे पहले ये संदेश।
1: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है।

अखिल और ध्वनि भोषाली के स्वर में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी लुका छिपी। आइए अब सुनते हैं नंदिनी श्रीकर के स्वर में फिल्म रावण से इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज रात्रि 10 बजे होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आप अपनी फरमाइश 7088-0000-731 पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं और अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को

0: बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्र

0: 28वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में एनडीआरएफ का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट

0: गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
1: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals comprising 4 gold in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes,

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
2: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं जिनमें की प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइटरी डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह के जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर

0: इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है?
1: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो। आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए। एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज है वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए वो है स्तनपान करना। वो अभी भी मतलब हमारे देश में क्या इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
0: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सभी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन अनकम्युनिकेबल डिजीजेज जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती है उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उसको नहीं पिलाने देती है, वो बच्चा ले जाती है, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है शहद पिलाना है क्योंकि रस में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा। और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है। एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ, तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है, और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजंस बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, NEET JEE निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके IQ पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजी

रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजी, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजी

0: तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
1: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है. नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से. उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट. इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड, MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है. एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओ से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए. हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए. तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो. जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है. मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था. तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे, और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे. तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है. रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया. RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को. आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है. और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का. बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं. तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है. और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना

0: ऑन वन या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर सभी की रोल है, और जैसा अभी अनु मैम भी बता
1: के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
2: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है, नॉट ओनली
0: जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.5 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है उसमें, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं उनके वहां के
2: को जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से,
0: हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल। बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के
2: प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले, और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी है। लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी,
1: जी
2: तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज होती है, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है, स्पेशली जिंक। आपको याद होगा कि 20 साल पहले
1: जी
2: हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना।
1: जी
2: जब मैं MD कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी एंड नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही, खेलेगा नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा, तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजी करना है। लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल HB

0: आया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकालने जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो इसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा। पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें। एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओ को लगता है कि हाँ, उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स हैं, मैं कहना चाहूंगी, आप प्लीज किताब पढ़िए कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी,
1: जी
2: उसके बाद तो सब कुछ
1: बिल्कुल
2: पजल
1: ठीक
2: की
1: कह रही
2: तरह
1: हैं।
2: फिट हो जाएगा।
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी

और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनास सलमा हाशमी, असद अरहाब हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म कटी पतंग के इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। इनके साथ ही विशाखा और कमल मुरादाबाद से, और साथ में सुनने वाले हमारे श्रोता हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता हैं राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्रा भाई रुद्रा, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल जी, ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश, रश्मि, नीलम, कुसुम, शारदा गुप्ता, रूपा इलाहाबादी। साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ रहे हैं रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म उपहार के इस गीत को।

हमारे श्रोता जो जुड़ते हैं हमारे साथ, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले श्रोता ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश गांव भोपा से जनेश्वर कुमार आहलूवालिया, बालेश्वर कुमार आलू वाली वालिया, राकेश कुमार आहलूवालिया, सारांश, वेदांत, डुगू, नंदू, किट्टू, कुलश्रेष्ठ और चीकू आहलूवालिया। साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता हैं सहारनपुर कुम्हार हीरा से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना, प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मसरूर अली। और साथ जुड़ रहे हैं हसनपुर भलसवा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मनोज ढोलके, सीमा ढोलके, लक्ष्मी ढोलके, माही ढोलके, आदित्य ढोलके, विनोद ढोलके, पिंकी ढोलके, साक्षी ढोलके, सागर ढोलके, साहिल ढोलके, सौरभ ढोलके और पूरा ढोलके परिवार। इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। इनके साथ ही जुड़ रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आप सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर के स्वर में इस गीत को।

श्रोता और सुनने वाले हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं जो कि जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा, और इनके साथ ही साथ सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, और इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं कस्बा चिलकाना ज़िला सहारनपुर से मोहम्मद ज़ारिफ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर, मुन्ना नाजिम, साथ ही एटा रोड गंज डंडवारा से फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फैज़ल शेख, नुसरत शेख, केसर शेख, अरमान शेख, अरीब शेख, और इनके साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कि हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आप सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में फिल्म त्रिशूल के इस गीत को।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और साथ ही साथ गांव झगुड़ी ज़िला यमुनानगर से रणधीर बांगर, गुरमेजू, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ मरहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसिद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खां, साथ ही गांव खरखड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा। इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता हैं मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख,

गुप्ता, अंशुल गुप्ता और सभी चावला फैमिली मेंबर्स। इनके साथ ही साथ बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान और सोफिया खान, और साथ ही साथ चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप सुनना चाहते हैं फिल्म आंधी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में इस गीत को।

का हर गैफ कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार।

मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं सहावर रोड गंज डंडवारा से, मोहम्मद उस्मान अंसारी, शामसुल कमर राही, मोहम्मद कलीम अंसारी और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, और इन्हीं के साथ सुनने वाले हमारे श्रोता हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, और साथ ही जुड़ रहे हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिन्ना कौसर, और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही। आप श्रोताओं ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि निखिल वर्मा और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं जो कि जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। आप सुनना चाहते हैं फिल्म बेमिसाल से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में इस गीत।

शामसुल कमर राही, मोहम्मद कलीम अंसारी और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, और इन्हीं के साथ सुनने वाले हमारे श्रोता हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, और साथ ही जुड़ रहे हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिन्ना कौसर, और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही। आप श्रोताओं ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि निखिल वर्मा, और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं जो कि जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। आप सुनना चाहते हैं फिल्म बेमिसाल से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में इस गीत।

माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहिब संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर दिव्यम जैन, इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे रिहान शेख, और साथ ही जुड़ने वाले श्रोता हैं शिवपुरम रुड़की से अर्जुन बर्मन, और इनके साथ ही सुनने वाले हमारे अन्य श्रोता जो कि हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और साथ ही मोहम्मद कैफ अंसारी, साथ ही मोहल्ला बारादरी महमूद खां, रामपुर से भाई रफ़त साहिब, सैयद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी, इनके साथ ही साथ गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान और मनोज भयान, साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, और सिविल लाइंस रामपुर से सुनील कुमार सक्सेना, मयंक और नक्श, साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म वो सात दिन से शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में।

चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो जुड़ते हैं हमारे साथ, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, विष्णु अग्रवाल जी, इनके साथ ही सुन रहे हैं हमें जो कि श्रोता है शांति निवास लेह गांव रेलवे, ज़िला अमरावती, महाराष्ट्र से, और वंदना कुरहाड़ी, कुमारी कल्पना कुरहाड़ी, आशीष, दीपक और कुरहाड़ी। साथ ही सुनने वाले श्रोता हैं नर्मदा पार्क मंगलवीड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ सैयद आलम हाशमी और समस्त हाशमी परिवार, नाज पैलेस अजमेर शरीफ, राजस्थान से। श्रोताओं, सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और साथ ही फरमाइश भेजने वाले श्रोता गणेशपुरा, गंज डंडवारा, एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सैयद भाई मंसूरी, और मेरे ख्याल से आप अपने गानों की फरमाइश ऑलरेडी सुन चुके हैं माय डियर लिसनर्स। और जी हाँ, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका हमेशा ये कहना होता है कि प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव लाइफ, वो हैं गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाज़िश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव, और आप सुनना चाहते हैं फिल्म रास से अलका याग्निक के इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हुए, अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमान

लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।